0: 4209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs.
1: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। मैं हूँ रोहित सिंह। ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर। नमस्कार, राम राम, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और बुला कहते हुए एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक जुड़े रहेगा हमारे साथ शाम का सफर में। हमेशा की तरह फोन नंबर 3279-1701 पर कार्यक्रम आप सभी सप्ताह के 7 दिन सुनते हैं। और आज रविवार की शाम ठीक 12:30 बजे से 2:30 बजे तक शाम का सफर में रोहित सिंह का साथ रहेगा। साथ जरूर दीजिएगा। मिले जुले संगीत का कार्यक्रम, खूबसूरत सा कार्यक्रम आप सभी के साथ में होकर हम आपके लिए पेश करेंगे अपने स्टूडियो से लाइव कार्यक्रम आप सभी के लिए। याद कीजिएगा रेडियो ब्रिजवानी सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आपके सेवा में लगे रहते हैं। और ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक रोहित सिंह के साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। देश विदेश में आप है, ऑस्ट्रेलिया में, इंटरस्टेट में आप हैं और ब्रिस्बेन में आप हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिस्बेन पर। जुड़े रहेगा हमारे साथ ही 2:30 बजे तक खूब सा कार्यक्रम में रोहित सिंह के साथ। याद कीजिएगा, बिजली चमक के लगी, याद कीजिएगा यह है ब्रिस्बेन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। खूब सा कार्यक्रम में जरूर से साथ दीजिएगा। शाम के सफर में रोहित सिंह के साथ है 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा।

दूसरे साथियों के लिए अपने अपना रेडियो अभी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो प्रिजवानी पर। जुड़े रहेगा ठीक हमारे साथ ठीक ढाई बजे तक शाम के सफर में मिले जुले संगीत का कार्यक्रम। और हमेशा की तरह कार्यक्रम आरम्भ करते हैं स्थानीय कलाकार से, और आज के हमारे स्थानीय कलाकार सुबा फिजी के हैरी विल्सन, उनकी आवाज में बहुत ही खूबसूरत संगीत।

एडी विल्सन को आप सभी सुन रहे थे, और अब चलते हैं फिजी के जाने माने रोनल जे की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत रेडियो ब्रिजवानी पर, साथ दीजिएगा ठीक 2:30 बजे तक शाम के सफर में।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

चलते हैं दोस्तों साथियों, मिले जुले संगीत का कार्यक्रम हम आपके लिए आरंभ करते हैं। याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ है, ठीक है, इसे लेकर ढाई बजे तक स्टूडियो की घड़ी सार ठीक एक बज चुका है, ढाई बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जुड़े रहेगा हमारे साथ रेडियो ब्रिजवानी पर। आशा भोसले की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत फ्रॉम द नाम द बर्निंग ट्रेन आप सभी के लिए।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: रोहित के साथ एक कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिस्बेन पर सुन रहे हैं। हमारे साथ दीजिएगा ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक। चलते इस क्लिप में याद करते हैं अमेरिका में आज बहुत से लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शुभांशुपति धीरेन और रत्नेश सिंह आप एक कार्यक्रम सुन रहे हैं। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत गीत हमारी ओर से आपके लिए स्वर्गीय किशोर कुमार की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, साथ याद कीजिए गौरव सिंह के साथ एक कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं दोस्तों। साथियों साथ दीजिएगा ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक, जरूर से हमें फोन कीजिएगा 3379-1701 पर।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए. डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक. जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ. और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com.
11: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
12: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਥਮ ਭਜਨ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰ 2026 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ.
13: The legend, our bhajan man, live in Brisbane,
14: Saturday 15th August, 6:30 PM.
12: ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ.
14: At Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.

सपना मुखर्जी और किशोर कुमार की आवाज में पर्दे पर अनिल कपूर और डिंपल कपाड़िया के लिए फिल्म का नाम जाबाज़।

आश भोसले और किशोर कुमार की आवाज में पर्दे पर कमल हसन और रीना रॉय के लिए रेडियो मेजबानी पर आज आप सभी के लिए इसी के साथ है शाम का सफर में।

बहुत एक खूबसूरत से गीत फिल्म नाम यादों की बारात याद कीजिएगा। रोहित सिंह के साथ ये कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। साथ दीजिएगा ढाई बजे तक, 10 मिनट रह चुका है 2 बजने में। रविवार की शाम 2 अगस्त 2026 का कार्यक्रम है।

अब दूसरा दिया किरदार रोशनी के साथ ही कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। दो बज चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार और आधे घंटे में कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। साथ जरूर दीजिएगा ठीक 2:30 बजे तक।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
9: उर्दू साथियात के जगह रोशन के साथ ही कार्यक्रम आप सभी सुन रहे, 15 मिनट में ही कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, साथ जरूर दीजिएगा।

दूसरा देसी गीत के साथ साथ हमारे कार्यक्रम के समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूँ कि आज के कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगले रविवार की शाम ठीक 12:30 बजे से होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, रेडियो बंद मत कीजिएगा। थोड़ी देर में आप सभी के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे, उनके साथ दीजिएगा ठीक 5 बजे तक। अगले सप्ताह मुलाकात होगी। हैव द बेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वीक अहेड। तब तक के लिए नमस्ते, शब खैर और विना।

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701। दोस्तों अभी आपके साथ ये रोहित सिंह ने चलते हैं अगला सफर पर, आपका हमारा साथ और आपके साथ। सो स्वागत है आप सभी का जो आज रेडियो विजवानी सुन रहे हैं।

दोस्तों, जो लोग आज पहली बार हमें सुन रहे हैं, आपका भी स्वागत है रेडियो विजवानी आईएम पर। 24/7 आप रेडियो विजवानी सुन सकते हैं हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक ब्रिस्बेन से। आज आपके साथ सुन अभी से लेकर ठीक 5 बजे तक साथ हमारा आपका।

दोस्तों, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी भी उनके आगे अपना सर झुकाती है।

दोस्तों, अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है या जन्मदिन है, कुछ भी खुशियाँ आपके साथ है, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी सी बधाइयाँ। हमारे साथ शामिल होने के लिए हमारा फोन नंबर नोट करें 3279-1701, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS करें।

चलते हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। अगला गीत जो है राजेश खन्ना पर्दे पर हेमा मालिनी के लिए, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा।

आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का रेडियो विजवानी पर। इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में ब्रिस्बेन टाइम देखा जाए 2:45 बजने वाले हैं। चलते हैं एक और गीत सुनते हैं, और हमारे साथ बहुत से लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। इसके बाद हम लेकर आएंगे फरमाइशी प्रोग्राम। चलते हैं एक और गीत सुनते हैं, बहुत प्यारा सा गीत है, आप खुद ही सुनिए।

0: ब्यूटीफुल उर्दू सॉन्ग दोस्तों, इसे मैंने लिया था पाकिस्तानी एल्बम से और इस गीत में जरूर आज हमारे साथ शामिल हो गए थे इनाला से शफीक और इफ़त।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित और फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: चलते हैं दोस्तों, फरमाइशी की शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जबकि 2 मिनट रह गए हैं हमारे स्टूडियोज में 3:00 है शाम का सफर। रेडियो विस्फानी अयम आपके साथ। सो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं एक बहुत हमारे पास इमोशनल गीत की फरमाइश है, श्रद्धांजलि गीत की फरमाइश है। और सभी ब्रिस्बेन वालों को पता है कि हमारे बहुत ही माने जाने मास्टर सुमेर जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन में बहुत नामी थे और उनकी एजुकेशन जो हुई थी वहाँ लंदन में एजुकेशन हुई थी, वाइस फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ नेंडी संगम सेकेंडरी स्कूल, उनकी डेथ हो गई है कल। बहुत सारे से लोगों के बीच में उनकी फ्यूनरल भी हो गई है और आज याद कर रहे हैं बहुत से लोग उनको। यही दुआ करते हैं कि वो कहीं भी रहे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खास करके एक कॉल हमारे पास है फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान उनके परिवार की ओर से, जिन्हों हाफिज अली खान का कहना है कि उनके जियोग्राफी टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे एंड ही वॉज लाइक्ड बाय द पब्लिक। जैसे आपको पता है हमारी नानी थी मिसिस रामदुराई, उनके परिवार के साथ बहुत क्लोज थे, बहुत से लोगों को क्लोज थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत से लोग उनको मिस भी कर रहे हैं। तो चलते हैं आज उनकी याद में एक बहुत प्यारा सा जगजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं चिट्ठी ना कोई संदेश।

जगजीत सिंह की आवाज में श्रद्धांजलि गीत आपने सुना और आज इस गीत को फरमाइश करने वाले थे फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान, उनके परिवार बहुत से लोगों के दिलों में अपनी यादें छोड़ गए हैं। मास्टर सुमेर चंद जो वहाँ पर उनके फॉर्मर वाइस प्रिंसिपल थे नेंडी संगम कॉलेज में, और यहाँ पर भी सीनियर्स में उन्होंने अपने बहुत नाम कमाए हैं, बहुत काम किए हैं। उनकी एजुकेशन हुई थी लंदन में और 88 ईयर्स उन्होंने अपना जीवन जिंदगी बिताए हैं यहाँ पर अर्थ पर। तो इट्स अ गुड एज, तो होप जहाँ भी रहे उनकी दुनिया खुश रहे। आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी, आपकी अपनी पहचान। चलते हैं दोस्तों फरमाशी की ओर बढ़ते हैं। तो दक्षा सोलंकी हमें सुन रही है लास वेगास में। दक्षा आपके लिए चलते हैं, बहुत प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: हमारे साथ शामिल हो गई थी दक्षा सोलंकी जो हमें सुन रही है लस बगस में. आप सुन रहे हैं रेडियो विस्पानी, आपकी अपनी पहचान.
1: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज, स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ. वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस.

0: ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ
1: चलते हैं अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हम शिकागो की ओर चलते हैं। अमला सिंह की फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत, गीत नहीं है गजल है मेहंदी हसन की आवाज में, तो सुनते हैं अमला की पसंद क्या है।

वहाँ से हमारे साथ जुड़े, वहाँ से नहीं लेकिन उनके साथ में जुड़े हैं कामिनी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए, और उनकी बहन हमें सुन रही है ऑकलैंड न्यूजीलैंड में प्रवीणा, और साथ में आशा एंड सुषमा द टू सिस्टर्स इन सिडनी। आपने फरमाइश किया है अगला गीत।

0: ब्यूटीफुल रिमेक सॉन्ग फरमाइश करने वाली थी सैक्रामेंटो यूएसए से कामिनी नारायण, साथ साथ में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में सुन रही हैं उनके बहन प्रवीणा और बहन आशा एंड सुषमा फ्रॉम सिडनी। आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी, आपकी अपनी पहचान, और आज आपके साथ सो
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
9: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
12: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: परमाटा सिडनी से फरमाइश है हमारे पास रॉबिन और उषा की ओर से, तो आप दोनों के लिए अगला गीत है जुम्मा चुम्मा दे दे।

0: पेश करने वाले थे इसके ऊपर मटर सिडनी से रॉबिन और उषा।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है, भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, caring with dignity।
0: तो चलते हैं सैक्रामेंटो USA की ओर। ललिता गौतम बहुत देर से प्रागी सुनने के लिए इंतजार में है। आज क्या मूड है उनका? रोमांटिक। तो आई होप ये थोड़ा सा आपके लिए रोमांटिक जरूर है।

इस गीत को हमेशा आप रफी साहब की आवाज में सुनते हैं, लेकिन आज इस गीत को आपने एक फीमेल वॉइस पर सुना, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसे फरमाइश करने वाली थी हमारी प्यारी सी आंटी जो हमें सुन रही है सैक्रामेंटो यूएसए में। हमेशा थोड़ा डिप्रेशन गीत फरमाइश करती है भजन, लेकिन आज अलग उनका कुछ मूड है रोमांटिक पर। हमें उम्मीद है गीत एंड आई होप सी एंजॉय। हाँ, मेरे पास मैसेज किया है, शी लव्स द सॉन्ग, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं अगली गीत की और हम बातें हैं, और सिडनी में हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं सनी और अमीजा। आपने फरमाइश किया है छूकर मेरे

0: और छूकर मेरे मन को फिल्म याराना सेलवा गीत जिसकी फरमाइश करने वाले थे वहां सिडनी में बैंक्सटाउन सिडनी से सनी और रामिजा.
1: Time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है.
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से. और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
2: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ.
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर. याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
0: दोस्तों हम चाहते हैं ग्रीन एकर्स सिडनी की ओर बढ़ते हैं. फरमाइश आई हमारे पास ग्रीन एकर्स सिडनी से रचिन आम मालती प्रसाद की ओर से. मेरे जैसा यार कहा, हमेशा आप मोबाइल वर्जन में सुनते, लेकिन आज भी मोबाइल वर्जन में इस गीत को आप सुनने जा रहे हैं.

गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे रचिन मालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीन एकर सिडनी। हम चलते हैं केडरन पार्क की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। केडरन पार्क से इस वक्त हमारे साथ शामिल हो गए हैं जोनी और सविता।

और दोस्तों फरमाइशाई थी हमारे पास करवन पाक से जुनी आवाज सविता की ओर से। इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में बस 10 मिनट लगे हैं 4 बजकर शाम का सफर रेडियो विस्पानी आई एम। हम चलते हैं कैलिफोर्निया यूएसए की ओर। फरमाइशाई हमारे पास मैक्स प्रसाद की ओर से। मैक्स आपके लिए अगला गीत।

पर्दे पर शशि कपूर के लिए किशोर कुमार की आवाज़ का ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने सुना, मेरी शर्मिली। और इस गीत में हमारे साथ शामिल हुए थे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूएसए। मेलबर्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मेलबर्न से फरमाइश है, यानी कि हमारे साथ शामिल हो गए एल्फ्रेड और किरण प्रसाद। आप दोनों के लिए अगला गीत।

चल मेरे मखना में शामिल हो गए थे हमारे साथ मेलबर्न से अल्फ्रेड और किरण प्रसाद। इसके साथ साथ हमारे स्टूडियोज के घड़ी में ठीक 4 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। आपके

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देख कर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: और दोस्तों हम चलते हैं मेनली वेस्ट विनम की ओर, जहां पर हमारा प्रोग्राम सुनी लक्ष्मी जी हमेशा की तरह. लक्ष्मी, चलते हैं आपके लिए जो अगला गीत है. इसे भी आप हमेशा सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में, लेकिन आज इस गीत को आप सुनेंगे फीमेल विजन पर.

मेनली वेस्ट के विन मेनली वेस्ट विनम से लक्ष्मी की फरमाइश पर आपने इस गीत को सुना जिम बुम्बा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारे साथ शामिल हो गए सोनिया फ्रॉम जिम बुम्बा सोनिया आपके लिए अगला गीत

इस गीत को फरमाइश करने वाली थी सोनिया फ्रॉम जिम बुम्बा। हम चलते हैं दोस्तों एक बार फिर सैक्रामेंटो यूएसए, विजयन आओ कामनी की पसंद पर सुनते हैं अगला गीत, खास करके चॉइस है विजयन की। को और भी एक गीत पसंद है, जोनी फ्रॉम कैडरन पार्क।

0: दोस्तों इस गीत को फरमाइश करने वाले थे
1: Sunder Popo, King of Hearts.
0: सॉरी इस गीत को फरमाइश करने वाले थे

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

चलते हैं दोस्तों, एक बार फिर हम सैक्रामेंटो यूएसए की और एक गजल की गजल की फरमाइश है हमारे पास कामनी की ओर से। तो कामनी, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर अगला गीत।

0: वह परसगीत है। इसकी फरमाइश आई थी हमारे पास कामनी की ओर से, जो हमें सुन रही है सेक्रामेंटो यूएसए में। आप सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी।
1: कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau.

क्या बात है दोस्तों, इस गीत के लिए हमारे पास 2-3 फीडबैक ऑलरेडी आ गए हैं फ्रॉम यस्टरडे। अगर आपने कल इस गीत को मिस कर दिया है तो आपको पता है छोटे पर हमें गीत बहुत गाते थे नानी तेरी मोनी, तो मैंने सोचा कि बहुत प्यारा गीत है अपनी नानी को याद करने के लिए। लेकिन हमारे पास नानी पर एक और बहुत प्यारा सा गीत है, थोड़ी देर में आप इसे भी सुनने वाले हैं।

चलते हैं दोस्तों, देखिए समय की ओर देखा जाए 4:45 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में। साथ हमारा आप करेगा ठीक 5 बजे तक, और वहां पर सैक्रामेंटो की ओर लगता है लोगों को आज नींद ही नहीं आ रही है, दे एंजॉयिंग द प्रोग्राम। तो क्यों नहीं हम आपकी अगली फरमाइश ललिता गौतम और साथ में कामिनी, आप दोनों की फरमाइश पर पेश है अगला गीत।

ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसे फरमाइश करने वाली थी कामनी और साथ में ललिता गौतम जो प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं सैक्रामेंटो यूएसए में। वादे के मुताबिक चलते हैं, नाना नानी को फिर से सुनते हैं।

और हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा चलने का समय हुआ। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सगई नागोड़ा बिग फीडबैक हियर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग द प्रोग्राम एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट वीकेंड पर, सैटरडे को 1 PM से शनिवार मस्ती म्यूजिक पर। लेकिन याद रखिएगा 5 o'clock से, आज ठीक 5 o'clock से आपके साथ हो जाएगी शशि चौहान। साथ उनका जरूर दीजिएगा। नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

भाई मौसम में भी गुरूर है आज, ऐसा तो नहीं मिजाज दिखता है कभी तो ये, कभी धूप तो कभी छांव, आज है ब्रिस्बेन का मिजाज। ठीक है, सो इसी के साथ मैं करती हूँ आपका स्वागत, मैं शशि जोखन, एक रंगीन शाम आपके नाम के साथ रेडियो ब्रिस्बानी 1701 पर। तो आज एक हरा भरा कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए, और उम्मीद है कि हर हफ्ते की तरह आज भी हमारा साथ रहेगा और आप हमारा साथ दोगे जरूर। ठीक है, सो चलो सुनते हैं एक बहुत ही बढ़िया गीत के साथ।

0: जी, आप है मुसाफिर इस सफर में, और सफर का नाम है ऑफ कोर्स एक रंगीन शाम आपके नाम। तो इसी तरह पूरे 7 बजे तक हम आपका साथ देंगे। और देखिए, नए और पुराने गीतों का संगम हर हफ्ते की तरह। तो आप हैं हमारे आवाज की दुनिया के दोस्तों। खुशियों भरा है समा, और आज आज मौसम कभी धूप तो कभी छांव, हाँ, मगर फिर भी ये भी चाहिए हमें ना, मगर खुशियों और उमंगों के साथ हम हो लिए हैं आपके साथ, और इसी तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते ही रहेंगे। छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट भी लेकर आए हैं, पारिवारिक विषय भी लेकर आए हैं, कुछ न्यूज व्यूज ये सभी कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसी तरह देते ही रहिए आप साथ, और हम देते रहेंगे आपका साथ।
1: Brace yourself, Darcy.

0: बिजली दिया नंगिया तारा और तारा तारा तारा जे कोल एना दे आओगे ता प्यार.
1: These girls are like naked live wires. If you get too close, you'll get an electric shock of love.

0: हाँ जी, आज रविवार 2 तारीख अगस्त यानी कि इस महीने का पहला रविवार। और बस मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये हम व्हाट दिस इज द 8th मंथ, हम 8वें महीने में दाखिल हो चुके हैं और बहुत ही जल्द सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर क्रिसमस। हाँ, और बीच में जो हमारे त्योहार आते रहेंगे वो तो आपको तो पता ही है ना।
1: This is Radio
0: मगर
1: 71 Brisbane.
0: इसी के साथ मैं यही कहूंगी कि आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आपको कहती हूँ नमस्कार, कैमचो, सात श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। फिल्म बैड न्यूज से ली गई है नगमा।
2: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा, हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
0: हाँ, कुछ गड़बड़ी हो गई है इसमें, मगर चलो कोई बात नहीं, इसे हम सुधार कर कुछ ही देर में लेकर आएंगे आपके लिए। मगर इन द मीन टाइम आप ये गीत

बहुत ही बढ़िया सा ये गीत। और हाँ जी, फिल्म धुरंधर से ली गई, ये तो मुझे पता है कि आपको पता ही है ना। मगर देखिए, जिस गीत के बारे में मैं कह रही थी उसे मैं अब पेश करने जा रही हूँ आपके लिए। मगर आपको बता दूँ, आप सोच ही रहे होंगे कि कौन से टॉपिक आज हम लेकर आए हैं पारिवारिक विषय में। तो देखिए, मैं गुरुवार और शुक्रवार को भी आई थी सुबह सुबह, सुबह का सफर लेकर। और जतीश जी और एमी नहीं थे, और साथ में नीलम भी नहीं थी शुक्रवार को। सो मैं दी थी आपका साथ, तो मैंने इस टॉपिक पर कुछ अवेयरनेस डाली थी, जो आपको पता ही है। आप कहते हैं ना कि गलत खान पान और अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल कई गंभीर बीमारियां कम उम्र में ही लोगों को अपना शिकार बना रही है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से ही कनेक्टेड है। सो इसे आप ज़रूर सुनिए, 6 बजे के बाद मैं इसे लेकर आऊँगी, क्योंकि बाउल कैंसर इन ऑस्ट्रेलियन यूथ, तो ये आपको जानना बेशक ज़रूरी है। तो इसे मैं दोहरा रही हूँ, मगर क्योंकि ये इतना स्पेशल टॉपिक है इसीलिए मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसे 6 बजे के बाद आपके लिए लेकर आऊँगी। तो बस इसी तरह कार्यक्रम को मैं आगे लेकर बढ़ती रहूँगी, और आप भी हमारा साथ इसी तरह देती ही रहिए, ठीक है। सो

0: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
1: हाँ जी, सुनते ही रहिए। और अब अगला गीत आपके लिए।
2: तुम्हें गाना सीखिए।
1: तो देखिए, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और ऑफ कोर्स हम पूरे 7 बजे तक आपका साथ देंगे। देखिए, आज जो इंग्लिश शब्द मैं लेकर आती हूँ, आज जो शब्द मैं लेकर आई हूँ वो है हेल्थ, HELTH, ठीक है। जबकि आज पारिवारिक विषय हेल्थ से जुड़ी है, तो आप ढूंढिए इसके हिंदी शब्द।

हाँ जी, कहते हैं ना कि कल क्या होगा उसकी चिंता में अपना आज बर्बाद मत कीजिए, ठीक है? तो जो समय अभी आपके पास है वही सबसे बड़ा अवसर है आपके लिए। छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना? छोटे छोटे कदम ही एक बड़ी मंजिल तक पहुंचाता है। और आलस्य को त्यागिए, अपने समय की कीमत कीजिए और आज से ही अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। जो आज पसीना आप बहाएंगे कल वही अपनी सफलता का परचम लहराते हैं। हाँ, सही कहा हमने? सो देखिए, कल से तो काम पर जाना है आपको, ठीक है ना? तो जाइए जरूर, क्यों ना, काम पर जाइए, जरूरी है। एंड बच्चे स्कूल की तैयारी में लगे हुए होंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा?

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चल
2: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा
3: या
2: ओके सॉफ्ट
3: सॉफ्ट या अब लाउड या

0: रजा।
1: हाँ जी, आप सुन रहे थे शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म से ली गई ये नगमा। और अब हम चलते हैं सलमान खान की ओर। हाँ जी, तो देखिए, सलमान खान को मिला सुप्रीम कोर्ट का साथ और कोर्ट ने काला हिरन जो मेकर्स को दिए कंटेंट हटाने के लिए सख्त निर्देश। और काला हिरन नाम की फिल्म आप तो सुने ही होंगे शायद, अनाउंसमेंट उनकी चर्चा में थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश में फिल्म काला हिरन द बैटल फॉर लीगल के टीजर को उससे जुड़े जो दूसरे पोस्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। ये फिल्म कथित तौर पर एक एक्टर सलमान खान पर आधारित है और इन पर सलमान ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने जस्टिस ज्योति सिंह की आगे ये रखा कि ये भी 27 जुलाई को खान की जो अर्जी थी इस पर दिए गए आदेश में कहा गया है कि काला हिरन के मेकर्स 59 वर्षीय बॉलीवुड स्टार के नाम, हाव भाव और पर्सनैलिटी से जुड़ी दूसरी चीज़ों का उनकी इजाज़त के बिना कमर्शियल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा ऐसा कंटेंट नहीं फैला सकते हैं जिससे उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे। तो मैं आपको कुछ पीछे लेकर चलना चाहती हूं और आपको बताना चाहती हूं कि ये जो इशू हो रही है, ये आपको याद होगा 1998 अक्टूबर में ये जो फिल्म हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान अपने पूरे ग्रुप के साथ राजस्थान गए हुए थे, नियर जोधपुर राजस्थान, और वहाँ पर एक ब्लैक बक पाउचिंग इंसिडेंट ओके हुई थी और एक ये जो हिरन की बात हो रही है उनको शूट कर दी गई थी और वहाँ के जो गांववासी थे तो वो बहुत दुखित हुए थे इसको लेकर। तो इसी पर ये फिल्म बनाया जा रहा है और बन गई है एक्चुअली। काला हिरन मेकर्स ने इस फिल्म को बनाया है और जैसे हमने कहा, काला हिरन द बैटल फॉर लीगल। सो सलमान खान पर बन रही ऐसा वो कहते हैं कि सलमान खान पर नहीं बनी है ये फिल्म, मगर कहा गया है कि यस, इसी पर फिल्म बनी है। तो चलो हम सलमान खान की ही फिल्मों से कुछ गाने सुनते हैं। पहला गीत फिल्म,
2: अच्छा हीरो कौन है उसका,
1: फिल्म बॉडीगार्ड से ली गई है।
3: मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना।

हाँ जी, तो ये थे फिल्म बॉडीगार्ड से ली गई नगमा। और इस फिल्म में मेरे ख्याल से इस फिल्म में उनका साथ एक्चुअली करीना कपूर थी उनके साथ फिल्म बॉडीगार्ड में। एनीवे, तो जिस फिल्म के बारे में मैं बात कर रही थी, जिसको लेकर अभी विवाद चल रही है, तो वो फिल्म थी हम साथ साथ है। और इसमें सलमान खान, सैफ अली खान ऐसे कई स्टार्स साथ में काम किए थे। तो इसी फिल्म का ये नगमा आपको सुनाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा नगमा है ये, हम साथ साथ हैं।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन
1: में यू हैव हेल्प ऑन योर फर्स्ट 100,
0: पर कहाँ से खरीदूँ पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: हाँ जी, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और अगर अभी अभी आप ट्यून इन किए हैं तो आपका हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। आप जहां पर भी हो, जिस हाल में भी हो, हम आपको इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सो चलते हैं आगे। ये भी उन्हीं

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: हाँ जी, आपको तो शायद पता ही होगा कि रामायणा पर फिल्म बनी हुई है. रामायणा, इसकी ट्रेलर आउट हो चुकी है. अब रामायणा का ट्रेलर आप देख सकेंगे और 30 जुलाई को ये ट्रेलर रिलीज हुई है. और इस फिल्म में राम का जो किरदार है ना, इसमें रणवीर कपूर निभा रहे हैं. और ये ट्रेलर 4 मिनट 15 सेकंड में दिखेंगे, श्री राम से लेकर रावण तक. तो ये फिल्म कई भाषाओं में भी रिलीज होगी, जिसमें एक खास अंग्रेजी भाषा भी इसमें शामिल है. सो एनीवे, अभी तो हम चलते हैं. जो गीत आपके लिए लेकर आई हूँ वो आलिया भट्ट आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पर फिल्म आई गई. एंड इन दोनों पर ये दोनों की जोड़ी बहुत ही जस्ती है, बहुत से लोग पसंद करते हैं. एंड वो भी बात है कि इनकी अब शादी तो हो ही चुकी है, बच्ची भी हो गई है. और कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट भी बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस है और बहुत ही अच्छी माँ भी बनकर दिखाई दे रही है. और चलो, उन्हीं के फिल्म से ली गई ये नगमा.
1: अग्नि अस्त्र।

हाँ जी, देखिए ये जबकि मैंने आपको कुछ, ये उस फिल्म के गीत नहीं है, ये तो अलग सी फिल्म का नगमा मैं आपको सुना रही थी, मगर इसमें रणवीर कपूर और आर्या भट्ट एक साथ दिखे थे ना। सो देखिए, फिल्म रामायण में कई बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं। फिल्म में साई पल्लवी माता सीता के रोल में दिखेंगी, और रवि दुबे लक्ष्मण जी के रोल में दिखेंगे, और सनी देओल हनुमान जी के रोल में दिखेंगे। तो रणवीर कपूर का कहना है कि मुझे हमेशा लगता है कि उस तरह की तैयारी जैसे बॉडी बनाना या एक्शन और डांस करना थोड़ी आसान होती है, क्योंकि वो ऊपरी चीजें हैं। लेकिन इस उम्र और जिंदगी के इस पड़ाव पर भगवान राम जी की फिलॉसफी को गहराई से समझना उस किरदार को निभाने के लिए बहुत जरूरी था। आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं और सिंपल रहना चाहते हैं, ना कि चीजों को मुश्किल बनाना चाहते हैं, और आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जिसे 80 साल का बुजुर्ग भी जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। तो ऊपरी बदलाव से कहीं ज्यादा जरूरी भगवान राम की जो शिक्षाओं को समझना था, और ये बहुत कठिन काम था। तो दो हिस्सों वाली ये फिल्म रिलीज के तौर पर, सीरीज के तौर पर प्लान की गई है। रामायण का पहला हिस्सा दिवाली 2026 में रिलीज होगा, जबकि दूसरा हिस्सा 2027 में सिनेमाघरों में, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब तो देखा ही जाएगा। सो एनीवे, दिस वाज मैंने सोचा आपको बता दूं इसके बारे में कुछ।

0: Our digital top-up to loved ones in Fiji is super easy. Keval apne nearest dairy, supermarket or petrol station pahunchiye aur kharidiye 10, 20, 30 ya $50 top-up. Aap website www.digicelinternational.com visit bhi kar sakte hain. Digicel top-up apne family ko Fiji dene ke liye. Paisa bhejne ke liye our partner Click Express Pick is the easiest way to send money to Digicel Fiji. Keval aapko register hona hai at www.clickexpresspick.com par. Digicel, we are better together.
1: हाँ जी बिल्कुल. अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रेडियो ब्रिजवानी की अंजला पूरन जी से संपर्क कीजिए. वो आपको बतलाएगी कि कैसे आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हो. सो याद रखिए, उन्हीं को आप फोन कीजिए क्योंकि दैट्स द बेस्ट वे टू गो. और हाँ जी, बहुत सारे बातें हैं करने के लिए, मगर अभी तो 1947 बटवारा 1947 बस ये फिल्म एक्चुअली सनी देओल इसमें दिखेंगे, मगर उन्हीं के एक फिल्म से ली गई नगमा मैंने सोचा आपके लिए पेश कर दूं. एक्चुअली दिस इज फ्रॉम गदर टू, बट इससे पहले आपको बता दूं कि कुछ ही देर में पारिवारिक विषय हम पेश करेंगे 6 बजे के, बस 6 तो बज ही चुके हैं, बस कुछ ही देर में. ठीक है, पहले आप ये गीत सुनिए.
2: साइकिल दिला दो ना,
3: कुछ और मंग लेना, मोटरसाइकिल
4: दिला दीजिए ना.

தீட்டக திட்டதா.

हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा नगमा है। चलो तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ पारिवारिक विषय की ओर। ठीक है, पारिवारिक विषय में मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर आती हूँ जो अवेयरनेस क्रिएट करती है हम सभी के लिए। मैं रिसर्च करके कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती ही रहती हूँ, और जो आपके लिए ठीक हो उसे मैं पेश करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो देखिए, गलत खान पान और अनहेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है, इनकी वजह से आजकल कई गंभीर बीमारियों का सामना कम उम्र के ही लोगों को अपना शिकार बना रही है। एंड दिस इज बहुत ही सैड है ये कि हमारे जो नई पीढ़ी इसके शिकार हो रहे हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इसे समझें और इसे इस पर अमल करें और इस पर एक्शन लें। ठीक है, सो इन्हीं में से एक कोलन कैंसर, जो अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा बल्कि युवाओं में भी तेजी से फैल रहा है। 1999 से 2020 के बीच 10 से मेरे ख्याल से 44 इयर्स की उम्र के लोगों में इस कैंसर के मामलों में खासी बढ़ती देखी गई है। तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की रिपोर्ट बताती है कि इस कैंसर से पीड़ित हर 5 में से एक मरीज की उम्र 55 वर्ष से कम होती है। तो रिसर्च के मुताबिक इस कैंसर के पीछे जो कारण है वो बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में खास तौर से युवाओं 20 से 30 की उम्र के लोग जो होते हैं में बाउल का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, एक ऐसा रिसर्च हुआ है और ऑस्ट्रेलियन टीवी में भी ये दिखाया गया था। तो शायद आप देखे भी होंगे, मगर मैंने सोचा कि इन केस आप मिस कर दिए हैं तो मैं आपको इसके बारे में जागरूकता फैलाऊं। ठीक है, तो ये 20 से 30 की उम्र के लोगों में बाउल का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार। तो युवा मरीजों के शुरुआती लक्षणों जैसे मल में खून या पेट दर्द को अक्सर डॉक्टर ये कहकर नजरअंदाज कर देते हैं कि वे इसके लिए बहुत छोटे हैं। शायद आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे अपने बच्चों के साथ, कभी कभी डॉक्टर्स ऐसे कह देते हैं, बड़ों के साथ भी डॉक्टर यही कह देते हैं कि ना, डोंट वरी, नथिंग टू वरी अबाउट, ये मामूली सी बात है, हम इस पर नजर रखेंगे, वगैरह वगैरह। शायद ये फेमिलियर साउंड कर रही होगी आपको। तो युवाओं में बढ़ता मोटापा कोलन कैंसर का प्रमुख कारण बनता है, और कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि युवाओं में शराब पीने की आदत भी बढ़ती मृत्यु दर का प्रमुख कारण बन गया है। तो इस कैंसर से बचाव करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना और तनाव को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तनाव, यू नो, स्ट्रेस। हाँ जी, तो अमेरिका के एक डॉक्टर ने अभी हाल ही में कोलन कैंसर से बचाव करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर फलों का सेवन करने की सलाह दी है। तो वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रियोलॉजिस्ट में प्रकाशित 2023 के एक अध्ययन के अनुसार कोलन कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए ये फल कारगर साबित हुए हैं। तो चलो, हम जानते हैं कि कैंसर से बचाव करने में कौन से 4 फलों का सेवन असरदार साबित होता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये तो डॉक्टर कहते हैं, और आफ्टर सो मेनी रिसर्च, अलग अलग रिसर्च के बाद ये सामने आई है। पहला तो ये है, तरबूज का करे सेवन। गर्मी में तरबूज का सेवन ना सिर्फ बॉडी को हाइड्रेट रखता है बल्कि बॉडी को हेल्थी भी रखता है, और खाने में मजेदार इस फल का नियमित सेवन करने से कोलन कैंसर के खतरे को कहा गया है कि 26% तक कम किया जा सकता है। और दूसरा है सेब, यानी एप्पल खाएं। रोज एप्पल का सेवन करने से बीमारियों से बचाव होता है, ऐसे हम कई बरसों से सुनते आए हैं, है ना? आप भी सुने ही होंगे कि वन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे।
तो सेब में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है और अधिक मात्रा में सेवन करने से कोलन कैंसर का खतरा लगभग 25% तक कम हो सकता है। और तीसरा है कीवी का सेवन, कीवी फ्रूट। यस, अगर आप न्यूजीलैंड वासियों से पूछेंगे तो यस, कीवी फ्रूट इज द बेस्ट। सो विटामिन सी से भरपूर कीवी का सेवन करने से बीमारियों से बचाव होता है, ये हम सभी जानते हैं। मगर इस फल को रोज खाने से कोलन कैंसर का खतरा कहा गया है 13% कम हो सकता है। ठीक है, तो फिर दूसरा है सिट्रस फ्रूट का करे सेवन। तो संतरे, ग्रेपफ्रूट, नींबू और लाइम जैसे सिट्रस फ्रूट का सेवन करने से कोलन कैंसर का खतरा कहा गया है 9% कम हो सकता है। और ये फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं और डीएनए को नुकसान से बचाते हैं। तो चलो अब हम जानते हैं बाउल कैंसर के मुख्य कारण और खतरे। ठीक है, इस पर हम नजर डालते हैं। तो मुख्य कारण और खतरे, पहला तो ये है खराब खान पान, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का अधिक सेवन करना। दूसरी है देरी से पहचान। ठीक है, देरी से पहचान, डॉक्टरों द्वारा कम उम्र के कारण लक्षणों को गंभीरता से ना लेना। सो आई हैव ऑलवेज बिन थिंकिंग कि ऐसे होता है, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। और तीसरा है 20 से 30 साल की उम्र की महिलाओं में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमने पहले कहा, नाइन न्यूज ने समय समय पर बाउल कैंसर के नए लक्षणों, बचाव और चिकित्सा खोजों पर खबरें दिखाई हैं। और मैंने सोचा कि आपको बाउल कैंसर यानी आंत का कैंसर, उनकी जो उनकी कुछ जो स्वास्थ्य सलाह और जांच आपके साथ शेयर करूं। यदि आपको ऐसे कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। एंड अगर डॉक्टर कह भी दे कि ना यू आर टू यंग फॉर दिस, आप उनसे कहिए।

वो कर सकते हैं कि भाई मैं तो चला गया, डॉक्टर ही सब कुछ मेरे लिए करेगा, आप अच्छी तरह रिसर्च कीजिए, ऑनलाइन कुछ ना कुछ पता कीजिए और एक पेन पेपर में आगे से लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो हम भूल ही जाते हैं कि हम किस किस सिम्टम्स डिस्कस करने यहाँ आए हैं. सो एनीवे, शुरुआती चरण में पहचान होने पर बाउल कैंसर का इलाज और ठीक होने की संभावना जो है वो कई हद तक ठीक हो सकती है. सो ये थी कुछ जानकारी आपके लिए, हम सभी के लिए. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरे जब आपको बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आती है. सो इनमें से जो भी मोतियाँ आप चुनना चाहें आप चुन सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, और अगर ना ठीक लगे तो आप ऑफ कोर्स इसे बेअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि ये शायद आपके लिए थी ही नहीं. हाँ, सो ये थे आज के पारिवारिक विषय आप सभी के लिए. और अब हम यहाँ से मोड़ को बदलते हैं, आपको लेकर चलते हैं पुराने गीतों की दुनिया में. सदाबहार गाने एंजॉय कीजिए आप.

0: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ
1: उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू
0: न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन

0: बहुत lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
1: हाँ जी, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो अगला गीत मैं आपके लिए चुनकर लाई हूँ वो है इस बार मुकेश जी की आवाज़ में, फिल्म दीवाना, जो 1968 की फिल्म, उसी फिल्म से ली गई ये नगमा, और बहुत ही, ये भी बहुत ही प्यारा सा गीत है, उम्मीद है आप पसंद।

हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा गीत ये भी, और इस बार मुकेश जी के आवाज में आप सुन रहे थे जी। कितना सुंदर ढंग से किसी ने लिखा है वक्त को लेकर, कहा गया है कि मंजिलों का इंतजार नहीं सफर का मजा लीजिए, मंजिलों का इंतजार नहीं सफर का मजा लीजिए, हर गुजरते पल के साथ खुद को नया कीजिए। दो लम्हों के बीच की, हाँ जी, दो लम्हों के बीच की हर घड़ी का नशा कीजिए, हर लम्हों के बीच की हर घड़ी का नशा कीजिए, हंसते गाते जीने की हर वजह ढूंढ लिया कीजिए। और बहुत मुश्किलों से मिली है ये जिंदगी, उस रब का शुक्र कीजिए, उस रब का शुक्र कीजिए, उस ईश्वर का शुक्र कीजिए, रोते रह जाने से कुछ ना होगा, वक्त के साथ इसे बेहतरीन कीजिए। लिखा है ना, क्या खूब। सो चलते हैं, अगला गीत सुनते हैं।

0: आपके नाम रेडियो ब्रिजवाणी 1701 पर हर रविवार को 5 से 7 बजे मैं शशि जोखन आपके साथ जुड़ जाती हूँ। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा गीत ये मैं आपके लिए लेकर आई थी और समय तो किसी का इंतजार ही नहीं करती है। अब लगभग मेरे ख्याल से 6:30 बजने वाली है ना। मगर कोई बात नहीं, चलो एक और गीत आपके लेकर आपके लिए आई हूँ, इसे आप एंजॉय कीजिए, ठीक है?
1: अपना दिल तो आवारा,
0: फिल्म 16 साल से ली गई है नगमा, पुराने गीतों की बहार।

0: हाँ जी, देखिए, अगर आप किसी भी कारणवश आज दुखित अवस्था में हैं, तो खासकर मैं आपको याद कर रही हूँ, आज कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ, एंड आज कुछ ऐसे नगमे लेकर आई हूँ कि जिससे शायद आपके जी को कुछ राहत मिले और आप के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए. ठीक है, सो एंजॉय कीजिए. ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में है, कश्मीर की कली का ये नगमा. बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म थी और फिल्म के जो दृश्य थे वो भी बहुत खूबसूरत, क्योंकि ये जो फिल्म थी ये कश्मीर में ही बनी थी. तो अगर आप कश्मीर नहीं गए हो तो मैं जाकर आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह, मगर वहाँ की यादें जो हैं, जो हादसाएं वहां पर हुई थी उसको जब हम सुनते हैं, सोचते हैं, तो मन भारी हो जाता है. मगर एनीवे, यू लिसन टू दिस सॉन्ग.
1: ये चांद सा रोशन

0: ओके, सो दैट वाज फ्रॉम फिल्म लीडर, ठीक है। और हाँ जी, तो जो हिंदी इंग्लिश शब्द मैं आपको बताई थी ना, खास तौर से बच्चों के लिए, ये शब्द वाज हेल्थ, HELTH। और जबकि आज पारिवारिक विषय में भी स्वास्थ्य के बारे हेल्थ के बारे में ही बातें हुई, तो एनीवे, जो वर्ड हेल्थ है इंग्लिश शब्द, उसे हिंदी में स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। या कुछ कुछ लोग सेहत भी कह देते हैं इसे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वास्थ्य जो वर्ड है, हेल्थ की जो मतलब स्वास्थ्य, हिंदी शब्द स्वास्थ्य है, उसे हम एवरीडे वर्ड जैसा इस्तेमाल भी करते हैं ना, फिजिकल कंडीशन को लेकर। तो सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ इस तरह बना सकते हो कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में गुड हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट एसेट इन लाइफ। डू यू अग्री विद दैट? डू यू अग्री करते हो आप? हिंदी में अच्छा स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वेल इट इज, ठीक है। चाहे जितना भी पैसे आपके पास हो, पर अगर आपकी हेल्थ खराब हो जाए और डॉक्टर कुछ ना कर सके, तो फिर आपको तो पता है क्या होगा ना। एनीवे, फल खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, यानी ईटिंग फ्रूट्स इज गुड फॉर आवर हेल्थ। फल खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। सो यू हैव लर्न्ट अ न्यू वर्ड, ठीक है। हेल्थ, हेल्थ को हिंदी में स्वास्थ्य बोलते हैं या सेहत बोलते हैं। एनीवे, अब यहाँ से हम मोड़ को एक बार फिर बदलेंगे और कुछ मिलीजुली गीत लेकर आए हैं, नई नई गीतों की ओर ज्यादा चलते हैं। तो चलो, फिल्म जब तक है जान, ये फिल्म शायद आप देखे भी होंगे, तो इस फिल्म का जो शीर्षक गीत है उसके साथ एक पोएम भी आती है, तो उसे आपके लिए पहले पेश करते हैं। एंजॉय।
1: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा गीत एंड फिल्म जब तक है जहाँ के टाइटल गीत आप सुन रहे थे। तो अब हमारे पास तो टाइम बहुत ही कम बचे हैं, बस मेरे ख्याल से जस्ट फ्यू मिनट्स, बट एनीवे चलो गीतों का संगम है। एंड ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है कि आप मेरे आवाज़ की दुनिया के दोस्त हो, तो अच्छे अच्छे गाने तो आपको सुनाने हैं। जाने से पहले एक और गीत आपके लिए, फिर देखते हैं कितना समय हमारा पास होगा। सो इसे हमने फिल्म जोधा अकबर से ली है आपके लिए, शायद आपको याद होगा ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन इस फिल्म में दिखे थे एक साथ, बहुत ही खूबसूरत सी जोड़ी, और इसके साथ साथ इन्होंने अपने किरदार बेखूबी से निभाए थे।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चल
2: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा
4: देखिए कहते हैं ना कि देखो तो किताब है जिंदगी यानी कि देखो तो ख्वाब है जिंदगी पढ़ो तो किताब है जिंदगी सुनो तो ज्ञान है जिंदगी पर हंसते रहो तो जहान है जिंदगी। ठीक है तो देखिए अभी तक मैं आपका साथ दे रही थी और अब आपके साथ सताक्षी जुड़ जाएगी तो उनका भी साथ दीजिए। सफर खत्म हो जाता है कहते हैं लेकिन जिंदगी यादों में सिमट कर नहीं रहती वो चलती रहती है आज भी कल भी और कुछ यादें खत्म नहीं होती हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले रविवार को ठीक है तो एंजॉय कीजिए ये गीत चलते चलते मैं आपको इसी के साथ छोड़े जा रही हूँ आशा भोसले और किशोर दा की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत आती रहेगी बहारे जाती रहेगी बहारे मगर आप हैं हमारे आवाज के दोस्त सो जरूर मिलते ही रहेंगे।

दोस्ती एक ऐसी किताब जिसमें चैप्टर्स कम होते हैं लेकिन हर लफ्ज दिल से लिखा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी आरजे सताक्षी और आप इस वक्त सुन रहे हैं फरमाइशी गीत। आज है फ्रेंडशिप डे, तो सबसे पहले अपने उन दोस्तों को फ्रेंडशिप डे विश कर दूं जो जिंदगी के किसी भी फेज में मुझे सुनना नहीं भूलते हैं, जिनको मुझसे प्यार है और जो मेरी दोस्ती को अपना हिस्सा मानते हैं। तो आज ये जो फ्रेंडशिप डे है ये खास नहीं है, क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे पर आया है आपका अपना फरमाइशी गीत। और आज के दिन मैं आपके दोस्तों के लिए प्ले करूंगी वो गाने, वो फरमाइशें जो आपने मुझ तक पहुंचाई हैं, आपकी दोस्ती की कहानियां और कुछ अनसुनी यादें। तो चलिए देखते हैं कि आज फरमाइशी गीतों में आपने क्या कुछ खास लिख के भेजा है हमें। लेकिन फ्रेंडशिप डे है तो सबसे पहले आपको भी तो मेरा फ्रेंडशिप डे गिफ्ट मिलना चाहिए ना। तो चलिए खास आपके नाम यारों दोस्ती, बड़ी ही अजीब है। एंजॉय कीजिए केके की आवाज में ये गाना और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर फरमाइशी गीत, क्योंकि इसके उस पार होगी आज की पहली फरमाइश पर आपसे बातें।

चलिए देखते हैं आज की पहली फरमाइश फ्रेंडशिप डे के मौके पर किसकी है, और ये है इंडिया लखनऊ से नेहा हमारे साथ। आप कहती हैं, हाय सताक्षी, मैं हूँ लखनऊ इंडिया से नेहा और मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड पूजा के लिए तेरा यार हूँ मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ। हम बचपन से साथ हैं और कॉलेज के बाद मिलना जरा कम हो गया था, बट शी विल ऑलवेज बी माई पर्सन। नेहा, दोस्ती वही होती है जो दूरी में भी दिल के पास रहे। पूजा, अगर सुन रही हैं आप इस वक्त फरमाइशी गीत, तो आप बहुत लकी हैं, और ये गाना आप दोनों के नाम, पूजा और नेहा आप दोनों के लिए। आइए सुनते हैं तेरा यार हूँ मैं।

0: कुछ क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
0: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत. फरमाइशी गीत आज बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज हम फरमाइशी गीतों में सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेंडशिप डे. और आपकी फरमाइशें भी आपके खास दोस्तों के नाम जो आपने भेजी हैं वो हम तक पहुंच चुकी हैं, और उन्हीं फरमाइशों में इस वक्त बस हम थोड़े से रंग भर रहे हैं. वैसे दोस्तों, कभी सोचा है हर दोस्ती की एक कहानी होती है, कुछ कॉलेज वाली, कुछ ऑफिस वाली और कुछ रेडियो से जुड़ी हुई. आपकी दोस्ती की याद क्या है, हमें बताते रहिए हमारे फरमाइशी गीतों के सफर में. फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ, और उसके बाद देखते हैं कि अगली फरमाइश किसकी है. स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्थानी, एंजॉय करते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत.

तो अगली फरमाइश जी, हमें जानती हूँ कि आप बहुत बेकरार हैं कि आपकी फरमाइश को मैं कब रीड करूंगी, तो बस थोड़ा सा इंतजार। मैंने कोशिश की है कि आज जितनी फरमाइशें हम ले सकें। अगली फरमाइश है अंकित की और आपने हमें लिख भेजा है क्वालालंपुर से। और अंकित कहते हैं कि हाय सताक्षी, मैं क्वालालंपुर से अंकित आपका शो फरमाइशी गीत रेगुलरली सुनता हूँ बिकॉज संडे मेरा ऑफ होता है और फरमाइशी गीत मेरे फेवरेट प्रोग्राम्स में से एक है। आज फरमाइशी गीत में फ्रेंडशिप डे के मौके पर मैं भी अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं और मेरे दोस्त हर साल मिलके फ्रेंडशिप डे पर एक ट्रिप प्लान करते हैं। इस बार नहीं हो पाया लेकिन मैं उनके लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, अतरंगी यारी। अंकित बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमें लिखने के लिए, और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ ये आपका हमारे शो में पहला मेल है। आप फरमाइशी गीत हर संडे सुनते हैं तो भाई अपनी फरमाइशें भी हम तक जरूर पहुंचाया करिए। और वैसे आपकी और आपके दोस्तों की जो फ्रेंडशिप आपने लिखी, जो प्लानिंग लिखी हर साल फ्रेंडशिप डे पर ट्रिप प्लानिंग, ये बड़ी फिल्मी सी लगती है। और अब बारी है आपके गीत की। तो जी हाँ, आपका गीत रेडियो ब्रसवानी पर बजने जा रहा है आपकी यारी के नाम, उन यादों के नाम जो कभी नहीं भूलती। अतरंगी यारी वजीर फिल्म का ये गाना, एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी पर सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

0: रे।
1: आपकी फरमाइशों को आप इस वक्त सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। फरमाइशी गीतों में आप ही की पसंद के गाने इस वक्त हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं। जी हाँ, ये वो गाने हैं जो आपने अपनी बेस्टी को डेडिकेट किए हैं आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर। अगला मेल, इतने सारे मेल्स हैं ना दोस्तों कि मैं, क्योंकि फ्रेंडशिप डे है, मैं नेक्स्ट वीक नहीं ले सकती ये मैसेजेस। सो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेल्स आज कवर करूँ और आप सबके बेस्टी को, आप सबके दोस्तों को आपके गाने जो आपने डेडिकेट किए हैं वो पहुंचा सकूं। सारा ने हमें लिखा है, और सारा ने हमें कहां से लिखा है, सारा नहीं लिख पाई हैं। वेल कोई बात नहीं, सारा लिखती हैं कि मैं अपनी बेस्टी आयशा के लिए दिल चाहता है का टाइटल ट्रैक बजवाना चाहती हूं, वी हैव ग्रोन अप टूगेदर। सारा बहुत बहुत बधाई आपको कि आप दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी दोस्ती आज के वक्त में, टेक्नोलॉजी का वक्त है, सोशल मीडिया का वक्त है, तो दोस्ती भी कहीं ना कहीं खो जाती है, बट आप आज भी साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्ती के एंथम को ही बजा देते हैं, सारा और आयशा के लिए दिल चाहता है। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

फरमाइशी गीतों को इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। फ्रेंडशिप डे फरमाइशी गीत आप एंजॉय कर रहे हैं आपकी सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। जी हाँ, आपके फ्रेंडशिप डे को और भी खास बना रहे हैं हम आप ही के फरमाइशी गीतों के साथ, क्योंकि यारी वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखा देती है और खुशी में हंसाने के साथ साथ गम में भी साथ निभाती है। और उसी यारी के नाम ये अगला ट्रैक, इसके उस पार जानेंगे अगली फरमाइश किसकी है। एंजॉय करते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

फरमाइशी गीतों में हम आ गए हैं अगली फरमाइश पर जो हमें मिली है ब्रिस्बेन से, और ब्रिस्बेन से ये लिखा है हमें आज मेल महक ने। महक कहती है, हाय सताक्षी, मैं बेसिकली भोपाल से बिलोंग करती हूँ और ब्रिस्बेन में इस वक्त पढ़ाई कर रही हूँ, और मेरी भोपाल की बहुत सारी यादें हैं मेरे दोस्तों के साथ, मेरी फ्रेंड्स के साथ। बेसिकली हमारी चार लड़कियों का गैंग है, हम कॉलेज में मिले थे और आज भी रोज एक दूसरे को गुड नाइट बोलना नहीं भूलते हैं। भले ही आज हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन ये गुड नाइट जो है ये जरूर पहुंचता है। तो आज गल्ला गुनिया में उन्हीं दोस्तों के नाम सुनना चाहती हूँ, श्रुति, दीप्ति और नैना, तुम सबके नाम आज मेरी ये फरमाइश प्लीज सताक्षी प्लीज जरूर प्ले कीजिएगा। लव यू गर्ल्स। महक, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें लिखने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने लिखा। तो आप गल्ला गुनिया सुनना चाहती हैं, हम जरूर प्ले करेंगे आपके लिए। श्रुति, दीप्ति और नैना, अगर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो महक की ओर से ये गाना आपके लिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे और एंजॉय कीजिए ट्रैक।

फरमाइशी गीतों में अगला मेल मेरे पास पहुंच चुका है और ये है जोया का और जोया ने हमें लिखा है सूर्य बीसी से। जोया कहती हैं कि सताक्षी रेडियो प्रसवानी की मैं रेगुलर फैन हूँ, मैं सारे प्रोग्राम सारे शो सुनती हूँ और फरमाइशी गीत मेरा बहुत ही फेवरेट है। पिछले हफ्ते जब मॉनसून ट्रैक्स बज रहे थे तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि फ्रेंडशिप डे को तो मैं अपने दोस्तों के लिए खास बनाकर रहूंगी। वैसे मेरा एक दोस्त है अयान जिसे मैं कभी मिली भी नहीं हूँ। हाँ जोया ही तो बड़ा मामला दिल का भी लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ आप आगे लिखती हैं, पहले आपकी बात तो पूरी सुन ली जाए भाई। हाँ तो जोया कहती है कि मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ लेकिन लॉकडाउन में इंस्टा डीएम से जो बात शुरू हुई आज दोस्ती बन गई है। ये गीत इलाही उसी के नाम है क्योंकि उसने मेरी दुनिया रंग दी। ओ गॉड, कितना खूबसूरत सा मैसेज दिया जोया आपने। और कभी कभी आपके पास से मुझे एक बात जरूर याद आई है कि कभी कभी ऐसा होता है ना जोया कि हम एक इंसान के साथ दोस्त होते हैं या हम रिलेशनशिप में भी होते हैं लेकिन बहुत वक्त तक साथ रहने के बाद भी, उससे मिलने के बाद भी, उसे फेस टू फेस देखने के बाद भी हम कई बार उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन वही एक इंसान कभी जिसे सिर्फ बात होती है वो हमारे दिल का हिस्सा बन जाता है। मैं ऐसा लगता है कि हम उसे बहुत टाइम से जानते हैं। सो यस, आपकी फ्रेंडशिप के नाम हम ये गाना आपके लिए जरूर प्ले करेंगे इलाही। इसे सुनिए और हमारे साथ सुनती रहिए फरमाइशी गीत। आपके दोस्त क्या नाम बताया आपने, आर्यन, आर्यन के नाम ये गाना है और जरूर आपकी फ्रेंडशिप जो है वो ऐसे ही खूबसूरत बनी रहे और ये जो दोस्ती पर विश्वास का रंग है ये हमेशा चढ़ा रहे। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, एंजॉय करते रहिए हमारे साथ फरमाइशी गीत।

फरमाइशी गीत आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। एक मेल मेरे पास आया है और आपने न तो अपना नाम लिखा है और ना ही रिक्वेस्ट लिखी है, लेकिन इनकी कहानी बड़ी ही खूबसूरत है, उसे मैं दोस्तों आपके साथ इस वक्त बांटना चाहती हूँ। एक छोटी सी कहानी है कि एक लिसनर ने मुझे लिखा कि सताक्षी, मैं और मेरी फ्रेंड हम कॉलेज के टाइम पर एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। एक दिन एग्जाम के प्रेशर में मेरी तबीयत खराब हो गई और वो आई, मुझे हॉस्टल तक उसने छोड़ा और उस दिन से हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। क्या दोस्ती इतनी सिंपल हो सकती है? बिल्कुल, आपने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन यस, दोस्ती बहुत ही सिंपल होती है और बहुत छोटी छोटी चीजों से इतनी अटूट बन जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपको लगता है कि यार, कभी तो हम दुश्मन थे एक दूसरे के, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, और आज हमारे बीच में इतना अच्छा बॉन्ड है, इतनी अच्छी दोस्ती है। तो यस, दोस्ती बहुत ही सिंपल होती है। आपकी दोस्त के नाम, आपके नाम। हम प्ले करते हैं फिलहाल ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: फरमाइशी गीत आप सुन रहे हैं सदाक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आपकी फरमाइशों को आज हमने बहुत ही खास बनाया है क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है। सबसे पहले तो मेरे सभी लिसनर्स को एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और ये फ्रेंडशिप डे आपकी दोस्ती में चार चांद लगाए, उसमें दोस्ती के रंग भरे, विश्वास के रंग भरे, बस यही हमारी कामना है। आज का फ्रेंडशिप डे रेडियो प्रस्वानी पर इसलिए खास है क्योंकि आज हम फ्रेंडशिप डे पर आपके लिए लेकर आए हैं वो फरमाइशें जो आपने अपने दोस्तों को खासकर डेडिकेट की हैं, और ऐसी ही फरमाइशों को इस वक्त हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं। वो गाने जो आपने सुनने चाहें, अपने दोस्तों को सुनवाने चाहें, और उन गानों से जुड़ी जो आपकी दोस्ती से जुड़ी कहानियां हैं वो भी आप मेरे साथ बांट रहे हैं, तो सच में आज का शो बहुत ही स्पेशल है। इस स्पेशल शो को और भी स्पेशल बनाते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्वानी, सुनते रहिए फरमाइशी गीत मेरे साथ।

राहुल का है मेरे पास अगला मैसेज, और राहुल ने हमें लिखा है नेपाल से। राहुल कहते हैं कि नेपाल में इस वक्त सताक्षी में पोस्टेड हूँ, और क्योंकि आज सब दोस्ती के गाने सुन रहे हैं तो मुझे भी मेरे दोस्त अर्पित की बहुत याद आ रही है। कभी अर्पित मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने हमें अलग कर दिया। आज भी उसकी बहुत याद आती है, तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि अर्पित, अगर तू मुझे सुन रहा है तो ये गीत सिर्फ तेरे नाम है भाई। राहुल, सबसे पहले तो आपको फ्रेंडशिप डे मुबारक हो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और देखिए, बहुत इमोशनल बात आपने कही है, आपका दोस्त अर्पित आपसे नाराज है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो। अर्पित, अगर आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, रेडियो ब्रिस्तानी आप सुन रहे हैं, तो मैं भी आपसे ये कहूंगी कि देखिए, दोस्त, खासकर सच्चे दोस्त, हमें हमेशा नहीं मिलते हैं। हाँ, रिश्ता कोई भी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, चाहे दोस्ती हो, घर हो, परिवार हो, अपने भाई से भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती होंगी, लेकिन उन्हें बैठकर सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि राहुल की बात मानिए और अपने दोस्त के साथ बैठकर बात कीजिए। आपको भी जरूर उनकी याद आती होगी, क्योंकि आप भी उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, वो भी आपके सबसे अच्छे दोस्त थे, तो जरूर बात कीजिए। राहुल अर्पित के लिए सुनना चाहते हैं दिल धड़कने दो, तो राहुल खास तौर से आप की और अर्पित के नाम ये गाना इंजॉय कीजिए। डेफिनेटली आपकी इस गाने से बहुत यादें जुड़ी होंगी, और हम विश करते हैं कि ये फ्रेंडशिप डे आपकी दोस्ती के लिए एक नया आगाज हो। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्तानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

ब्रिस्बेन से आया है मेरे पास दोस्तों अगला मेल रेडियो ब्रिस्बानी पर, और फरमाइशी गीतों में आपने लिखा है आपका नाम कीर्ति। जी कीर्ति का है अगला मेल मेरे पास दोस्तों, और कीर्ति कहती है कि सताक्षी हाय, और आपको और सभी लिसनर्स को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। कीर्ति आपको और आपके दोस्तों को भी फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और कीर्ति आगे लिखती है कि ऑफिस में, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये देश यहाँ के लोग मेरे लिए नए थे, और यहाँ ऑफिस में मेरी एक दोस्त बनी तान्या। हर डेडलाइन, हर प्रॉब्लम, हर लंच ब्रेक मेरा उसी के साथ होने लगा। दोस्ती सिर्फ कॉलेज में नहीं होती, कभी कभी सब सर्किल में भी हमें अच्छे दोस्त मिलते हैं। और ये जो गाना है आज का, ये मैं उसके नाम डेडिकेट करना चाहती हूँ। दिल चाहता है से प्लीज सुनवा दीजिए जाने क्यों। ये गाना मैं इसलिए सुनना चाहती हूँ क्योंकि ये गाना हम दोनों अक्सर गुनगुनाते हैं, और इस गाने का जो मीनिंग है उस पर हम लोग अक्सर हंसते हैं। तो ये गाना हम दोनों की यादों से जुड़ा है, प्लीज प्ले कर दीजिए। तान्या, आई लव यू, और हमेशा मेरी दोस्त रहना। बहुत खूबसूरत और प्यारा मैसेज कीर्ति ने दिया है दोस्तों हमें, कि दोस्त सिर्फ कॉलेज या स्कूल्स में ही नहीं बनते हैं, दोस्त जिंदगी के हर पड़ाव पर बनते हैं। बास्केटबॉल खेलते हुए 60 और 70 की उम्र में भी आपके लोगों से दोस्ती हो जाती है। जब रिटायरमेंट का टाइम होता है तब आपके दोस्त बनते हैं। आप पार्क में घूमने जाते हैं, लाफिंग क्लब में हिस्सा लेते हैं, वहां आपके दोस्त बनते हैं। हीलिंग से आप जुड़ते हैं जब कुछ क्लासेस ज्वाइन करते हैं, आजकल तो वर्कशॉप जब आप ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन वर्कशॉप्स, तो आपके दोस्त बन जाते हैं उन वर्कशॉप्स को करते हुए। तो यस, दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और दोस्त जिंदगी के हर फेज में हमारा साथ निभाते हैं, हमसे जुड़ते हैं, और किसी भी फेज में बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए वो दोस्त जो स्कूल और कॉलेजेस के बाद एक ऐसी एज में बने हैं जब लोगों को लगा कि अब दोस्ती की एज खत्म हो रही है, उन सबको रेडियो ब्रिस्बेन की ओर से अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबसे पहले। तो और रही बात कीर्ति की, तो कीर्ति बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया जिसे मैंने इस वक्त डिस्क्राइब भी किया। तो आपकी और तान्या की दोस्ती को किसी की नजर ना लगे, ये दोस्ती यूं ही चलती रहे, आगे बढ़ती रहे, और आप दोनों हमेशा साथ रहें। इसी विश के साथ जाने क्यों प्ले करती हूं फिल्म दिल चाहता है से। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रिस्बेन।

सो फरमाइश की तो में इस वक्त कौन है हमारे साथ, और इस वक्त है रोहित। तो रोहित, आपने हमें लिखा है मेलबर्न से, आप हमारे साथ जुड़े हैं रोहित, और आज फ्रेंडशिप डे है दोस्तों, तो थोड़ा सा इमोशनल मैसेज है रोहित का जरूर। बट कहते हैं ना कि आप मेरी सीट पर आकर बैठे तो आपको सब कुछ रीड करना पड़ेगा। रोहित कहते हैं कि मेरा दोस्त अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है सताक्षी, और बहुत बेस्ट फ्रेंड था मेरा, हम हमेशा साथ रहे, साथ बड़े हुए, हमने जिंदगी के कई प्रॉब्लम साथ में झेले। जब भी फ्रेंडशिप डे आता है तो उसकी याद दिला के जाता है। होता है ना कि जब सब एक स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को विश कर रहे हैं, और आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ नहीं है, तो उसकी याद आना लाजमी है। मैं अपने दोस्त को डेडिकेट करना चाहता हूँ फिल्म शोले से ये दोस्ती। ही वॉज माई ब्रदर, और कहीं भी रहे, किसी भी दुनिया में रहे, हमेशा मेरा दोस्त रहेगा। रोहित, कहीं ना कहीं अर्जुन जरूर इस वक्त आपको सुन रहा होगा, और कई बार कहते हैं कि आरजेस के पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, बट कई बार हम भी चुप हो जाते हैं, हमारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता कि तसल्ली दें, कुछ कहें या चुप रहें। बट डेफिनेटली दोस्ती अमर होती है, दिल से निभाई जाए तो हमेशा साथ रहती है, और चाहे जिंदगी हो या यादें, दोस्ती नहीं छूटती है। शोले फिल्म से आपने इतना खूबसूरत गाना डेडिकेट किया है जो दोस्ती की मिसाल है, जिसके बिना ये फ्रेंडशिप डे ही अधूरा है, उसी गाने को प्ले करती हूँ आपके लिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इंजॉय कीजिए, और आपकी और आपके दोस्त की, अर्जुन की दोस्ती के नाम ये गाना है। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: फरमाइशी गीत आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आपकी अपनी आरजे सताक्षी के साथ। आज का फरमाइशी गीत बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि आज का फरमाइशी गीत हमने पिरोया है उन धागों से जो दोस्ती को और भी अटूट बना देते हैं, और ये फरमाइशें वो फरमाइशें हैं जो इस वक्त आपने हमें लिखकर भेजी हैं। इसके पहले कि मैं अगली फरमाइश की ओर बढ़ूं, मैं कुछ उन लिसनर्स के नाम लेना चाहती हूँ जिनके गाने हम ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं, बट मैं उन्हें बता दूं कि वो गाने बच चुके हैं, और आपके दोस्तों के नाम भी मैं ले लूं ताकि आपने उनके लिए गाना डेडिकेट किया था आपके फ्रेंड्स को भी पता चले। प्रिया ने सुनना चाहा था शालिनी के लिए तेरा यार हूं मैं, जिसे मैं ऑलरेडी प्ले कर चुकी हूं, और ऐसा ही एक गाना समीर ने सुनना चाहा था अर्जुन के लिए दिल चाहता है, इसे भी मैं ऑलरेडी प्ले कर चुकी हूं। समीर ने ये भी लिखा है, एक मैसेज भी लिखा है अर्जुन के लिए कि मेरा दोस्त अर्जुन मुझसे दूर है पर हम दोनों हर रात वीडियो कॉल करते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है समीर की, दोस्तों के बीच में दूरियां कभी नहीं आती, वो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट वन इज जो गाना मैं प्ले कर चुकी हूँ वो है अरविंद ने सुनना चाहा था प्रिया के लिए ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अरविंद, ये गाना भी हम प्ले कर चुके हैं। प्रिया, आपको बता दें कि अरविंद ने हमें लिखा था और आपके लिए ये रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, जिसे हम ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं। सो आई होप कि आपने ये गाना जरूर सुना होगा। सो ये कुछ मेल्स थे, ये कुछ मेल्स मेरे पास आए थे जिनके गाने हम ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं। फिलहाल आप सबके नाम दोस्ती का ये एक और गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ, इसे भी इंजॉय कीजिए और अपनी फ्रेंडशिप को हमारे साथ जीते रहिए। के प्लस लिस्निंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत, आपके साथ है सताक्षी।

0: फरमाइशी गीतों में आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्ती को दोस्तों आपकी सताक्षी के साथ। और अलीशा का मेल है मेरे पास इस वक्त पुणे से। अलीशा कहती हैं, सभी सुनने वालों को फ्रेंडशिप डे बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आज अपनी दोस्त के लिए एक गाना सुनना चाहती हूँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना। हम दोनों का सफर कभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अलीशा जी आपने अपनी दोस्त का नाम तो हमें लिखा ही नहीं, और वाकई जिंदगी एक सुहाना सफर ही तो है। आपके साथ उस सफर को जरा और खूबसूरत बनाते हैं, और ये सॉन्ग आप दोनों की दोस्ती के नाम हम प्ले करते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रसवानी, सुनते रहिए फरमाइशी गीत और जीते रहिए अपनी दोस्ती को इस वक्त हमारे साथ।
1: जिंदगी

ये थे आज फरमाइशी गीतों के वो गाने जो दोस्ती के एहसासों से भरे थे। और आज फरमाइशी गीतों के सफर में आपके बहाने हम भी दोस्तों से मिले, बातें की और ढेर सारी यादें ताजा की। दोस्ती एक एहसास है दोस्तों, जो वक्त के साथ गहरा होता जाता है, लेकिन इस एहसास को फाइनली हमें इस वक्त रेडियो प्रस्वानी पर वाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से इसी सफर फरमाइशी गीतों के सफर में आपके साथ होगी एक नए जज्बात के साथ नई मुलाकात। तब तक के लिए एक मैसेज आप अपने दोस्तों को भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट जाते जाते मैं भी कर दूं कि मॉनसून स्पेशल जो एपिसोड था हमारा फरमाइशी गीतों का, उस पर ढेर सारे मेल्स और कहानियां आपके आए हैं, लेकिन इस हफ्ते हम उन्हें नहीं ले पाए क्योंकि फ्रेंडशिप डे है और फ्रेंडशिप डे के मेल्स हमें पहले लेने थे। बट डेफिनेटली वो प्रोग्राम जो है, वो आपके जो चार हैं, जो आपके थॉट्स हैं या जो आपने हमें मेल्स किए हैं, अपनी कहानियां सुनाई हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीक आपके लिए जरूर लेकर आएंगे।

शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपका रेडियो हमसफर। मेरा नाम है निले। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पर कारवाए गजल। आगाज हो चुका है। वाकई रिश्ते निभाने के लिए दिल से कोशिश करनी पड़ती है। दिल के समंदर में एहसासों को समझने के लिए गहराइयों में उतरना पड़ता है। तो चलिए आज इस गजलों की महफिल में कुछ रूठे ख्वाबों को मनाने की कोशिश करते हैं, कुछ छूटे रिश्तों को संवारने की कोशिश करते हैं। सुनते रहेगा कारवाए गजल। भाई आपका साथ नहीं होगा तो ये कारवां कैसे बनेगा? आपका साथ बहुत जरूरी है। तो अर्ज किया है कि अजब बात है, देखो क्या चाहते हैं। अजब बात है, देखो क्या चाहते हैं, जफा करके भी वो वफा चाहते हैं। जमाने में कोई भला काम कर लें, जमाने का हम तो भला चाहते हैं। कोई सरमदी गीत हमसे लिखा दे, कोई सरमदी गीत हमसे लिखा दे, यही तुझसे हम ऐ खुदा चाहते हैं। तेरे दर पे बैठे हैं धुनी रमाए, तेरे दर पे बैठे हैं धुनी रमाए, मोहब्बत भरी एक सदा चाहते हैं। है ए नूर हम तो मोहब्बत के बंदे, है ए नूर हम तो मोहब्बत के बंदे, नहीं हम किसी का बुरा चाहते हैं। तेरे दर पे बैठे हैं धुनी रमाए, मोहब्बत भरी एक सदा चाहते हैं।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कारवाए गजल। मैं हूं निल आपके साथ। जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कि आप जिंदा रहें, जरूरी है कि आप हालात को महसूस करें, उस दर्द को महसूस करें जिस दर्द से कोई और गुजर रहा है, उस पल को जिएं जिस पल में आप हैं, और इसलिए जरूरी है कि आप जिंदा रहें। वाकई हर पल में कुछ ना कुछ जरूर होता है जिसे हम महसूस करते हैं, पर हम अपनी ही परेशानियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हर वक्त जिंदगी से कहते हैं अभी नहीं जाने दे, हर ख्वाब से कहते हैं अभी नहीं यार जाने दे। तो जनाब, आज से अपनी खुशियों को अपना पता ठिकाना दे दीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आपका रेडियो हम सफर निले है आपके साथ। अजब यकीन उस शख्स के गुमान में था, वो बात करते हुए भी नई उड़ान में था। हवा भरी हुई फिरती थी अब के साहिल पर, कुछ ऐसा हौसला कश्ती के बादबा में था। हमारे भीगे हुए पर नहीं खुले वरना, हमें बुलाता सितारा तो आसमान में था। उतर गया है रगोपय में जायका उसका, उतर गया है रगोपय में जायका उसका, अजीब शहद सा कल रात उस जबान में था।

अनगिन है जख्म तन पर अब तुमसे क्या छुपाना, कांटों का उस पे बिस्तर अब तुमसे क्या छुपाना। वेलकम बैक, निलय आपके साथ रेडियो प्रिस्वानी पर आप सुन रहे हैं कारवाएं गजल। दिन ढल जाता है कई मसलों के साथ जूझते हुए, है ना। शाम ढलते ही लगता है कि उस हम सफर की तलाश की जाए जिसके साथ बैठकर दिन भर की बातें शेयर कर सकें, उसे वो छोटी से छोटी बात भी बता सकें जिसने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी थी, या फिर उस हल्की सी तकरार की बात भी कह दें जो माथे पर शिकन ले आई थी। ऐसे वक्त पर हर शख्स चाहता है कि कोई बात सुनने वाला हो, कोई बात सुने, न कि उन बातों पर कोई सलाह मशवरा करे। आमतौर पर जो लोग साथ होते हैं वो तुरंत हम सही हैं या गलत इस पर तराजू लेकर बैठ जाते हैं। ये तुमने गलत किया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। पता नहीं भाई, सुन लो हम जो कह रहे हैं, कभी तो हमें कहने दिया करो और तुम सुन भी लिया करो। क्योंकि कभी कभी दिल चाहता है कि बात सिर्फ सुनी जाए, वो सही है या गलत उसके तराजू में तोले बिना, बस सुनी जाए। क्यों होता है ना आपके साथ भी कई बार? भाई मेरे साथ तो कई बार होता है, इसीलिए अपनी सारी बातें लेकर मैं हर हफ्ते आपसे मिलने चला आता हूँ इस कारवा में। मेरे हम सफर बने रहिए और सुनते रहिए कारवाएं गजल। ये सब्र की नसीहत अपने ही पास रखो, ये सब्र की नसीहत अपने ही पास रखो, पानी है सर से ऊपर अब तुमसे क्या छुपाना, हर बात कायदे की हमसे छुपा गया है, कहता रहा बराबर अब तुमसे क्या छुपाना।

अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। वेलकम बैक भाई, मैं तो आपको हमेशा याद करता रहता हूँ। मेरा नाम है निलय और भाई आपके बगैर ये कारवां कभी पूरा ही नहीं हो सकता। कारवां गजल सुन रहे हैं आप, बेहतरीन नगमे और गजलें लेकर पेश हूं एक बार फिर से। तन्हाई में मैं अकेला नहीं रहता, मेरे ख्वाबों के साथ बातें करता रहता हूं। ये आप ही लोगों का जिक्र कर रहा हूं मैं, ऐसे ही होता है ना, उन अधूरे ख्वाबों के साथ जो कभी मेरे अपने थे, जो पूरे करने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया था। उन अधूरे ख्वाबों के साथ जो कभी मेरे अपने थे, जिन्हें पूरा करने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिए थे। उन ख्वाबों के साथ बैठकर तसल्ली के साथ बातें करता हूं। वही ख्वाब हैं जो अब मेरे अपने रहे हैं। जो ख्वाब पूरे हो गए वो पंख लगाकर उड़ गए, पर जो अधूरे थे बस अब वही मेरे पास रह गए। कई बार उनसे बैठकर बातें करता हूं, गुनगुना लेता हूं अब उन गीतों को जो तेरे ख्याल में कभी लिखे थे। वो ख्याल मन ही मन दोहरा लेता हूं जो साथ में बीते थे। अब तू नहीं, तेरा सहारा भी नहीं, लेकिन वो अधूरे ख्वाब अब भी मेरे हैं। तन्हाई में वो अब भी मेरा साथ नहीं छोड़ते। तन्हाई में तन्हाई ने तन्हाई से जीने ना दिया, ऐसा ही होता है। लेकिन जब तन्हा ज्यादा रहते हैं तो तन्हाई से ही मोहब्बत हो जाती है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, सुनते रहिए कारवां गजल। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर निले और आपने ट्यून इन किया है रेडियो प्रिस्वानी। कीप लिसनिंग। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। जख्म जब भी कोई जहन दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी सांस के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे।

अपनी नजर से आज गिरा दीजिए मुझे, मेरी वफा की कुछ तो सजा दीजिए मुझे। एक तरफा फैसले में था इंसाफ कहां का, मेरा कसूर क्या था बता दीजिए मुझे। दो जिस्म एक जान है बीमार हैं दोनों, दो जिस्म एक जान है बीमार हैं दोनों, उसको शफा मिलेगी दुआ दीजिए मुझे। वेलकम बैक, मैं निलय हूं आपके साथ, आपका हम सफर रेडियो हम सफर। जहां प्यार देखो वहीं घर बनाना, ये दिल की बात है, दिल की इमारत है भाई, ऐसी बनती है दिल से, दिलासों को छू के, उम्मीदों से मिलके। लेकिन इतनी मोहलत कहां कि घुटनों से सर उठाकर फलक को देख सकें। वक्त बैठा हुआ है गर्दन पर, तोड़ता जा रहा है टुकड़ों में, और इसी डर से मैं रोज आईने में देखता हूं, रोज कुछ ना संजो कर रखने की कोशिश करता हूं, पर बदल जाता है रोज कुछ ना कुछ। ढूंढ नहीं पाता मैं खुद का ही अक्स उस आईने में, रोज जलता हूं उन अधूरे रिश्तों में, पलता हूं उन अधूरी सांसों में, मगर जिंदगी के दस्तूर को निभाता हूं, जिए जाता हूं मैं। सुनते रहिएगा कारवां गजल मेरे यानी नीले के साथ, गजलों का कारवां जारी रहेगा अगली पेशकश आपके लिए। उससे पहले मैं जा रहा हूं आऊंगा शायद ही लौट कर, मैं जा रहा हूं आऊंगा शायद ही लौट कर, ऐसे न बार बार सदा दीजिए मुझे, सोया रहा हूं चांद में गफलत की नींद में, सोया रहा हूं चांद में गफलत की नींद में, रुखसत का आया वक्त जगा दीजिए मुझे।

अजब टीस है उस मुलाकात की, न बैठे न उठे न कुछ बात की, बजाहिर न होठों से कुछ भी कहा, नजर ने नजर से मगर बात की। नया चांद देखा था जिस रात को, है ताजा अभी याद उस रात की। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और लिखने को कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। दिल की कहानी प्यार का एहसास, अशकों के बगैर अधूरा ही रहता है। कहानी को दिलों तक पहुंचाने के लिए दिल में उठे दर्द सी आंखों को अशकों से भिगो दे, ऐसा एक खूबसूरत एहसास चाहिए। तब छू ही लेता है हर अल्फाज जो दिल की गहराइयों से उभरता है। अश्क लफ्जों की ताकत बनकर कलम से कागज को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। मोहब्बत में तो लिखिएगा जरूर, बहुत उम्दा लिख पाएंगे आप। जो महसूस करें, जिन भी लफ्जों का इस्तेमाल करें, कुछ लिख डालिए, और यकीन जानिए जब बरसों बाद आप इसे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने लिखा था। इतनी खूबसूरत फीलिंग से गुजर रहे हैं इस वक्त आप। लिखिए अपनी फीलिंग्स को, और चाहे तो हमसे भी शेयर कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। सुनते रहेगा कारवां गजल नीले के साथ। वो जो दरमियां मेरे उनके हुई, बनी बात क्या क्या न उस बात की। वो जो दरमियां मेरे उनके हुई, बनी बात क्या क्या न उस बात की। किसी ने उनसे न पूछा, कहा कहानी बना ली मेरी बात की। हकीकत को मैंने हकीकत कहा, ये खामी रही अपनी औकात की। वो अपना ही किस्सा सुनाते रहे, तवज्जो न की कुछ मेरी बात की।

0: ਸਾਡੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ
1: ਅਨੁਜ कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Yeah.

सभी को ये शिकायत है, शिकायत क्यों नहीं करते? हमें तुम ये बताओ, तुम मोहब्बत क्यों नहीं करते? हजारों झूठ से बेहतर है ख्वाहिश को भुला डालो। कहो तुम सच के सपनों से हिफाजत क्यों नहीं करते? ख्वातीन हज़रात, आप सुन रहे हैं कारवाए गजल, मैं हूं निले आपके साथ। कहीं तो कोई गिरह खुलनी है, कहीं तो कोई नई बात जहन में रहनी है। किसी एक डर से पीछा छूटेगा और कुछ नहीं तो किरदार तेरा निखरेगा। तो बस कोशिश से इश्क निभाता जा, मेहनत से वफा करता जा, मुश्किलों की ताकत बनता जा, खुद पर अपना यकीन बढ़ाता जा। जितनी आसानी से कह दिया उतना आसान नहीं है ये निभाना। बड़ी शिद्दत से मसलों को हल करना पड़ता है, खुद को तलाशना पड़ता है, तराशना पड़ता है, तब जाके अंदाज में असर पैदा होता है। जिंदगी तमाम हो जाती है कई बार कोशिश करते करते, खुद को तलाश करते करते। पर अगर कोशिश में सच्चाई है तो राह कितनी भी मुश्किल हो, मंजिल दूर नहीं है। सुनते रहेगा कारवाए गजल रेडियो बिरसवानी पर निले के साथ। कहां पर खो गए हैं हम नहीं मालूम खुद हमको, मगर तुमको भुलाने की हिमाकत क्यों नहीं करते? अदावत रोज होती है, मोहब्बत रोज मरती है। अदावत रोज होती है, मोहब्बत रोज मरती है। जहां वाले भी नफरत को ही आदत क्यों नहीं करते?

अजीब शख्स था, आंखों में ख्वाब छोड़ गया। वो मेरी मेज पे अपनी किताब छोड़ गया। नजर मिली तो अचानक झुका के वो नजरें मेरे सवाल के कितने जवाब छोड़ गया। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर निलय आपके साथ। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में न जाने कितनी तरह की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, अंदाज हैं, और हम सब एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, एक जैसे नहीं है। लेकिन संगीत जो है ना, म्यूजिक, वो पूरी दुनिया को एक ही धागे में पिरोने की ताकत रखता है। वैसे देखा जाए तो इमोशंस को शब्दों में लिखा नहीं जा सकता, पर संवेदनाओं को संगीत में पिरोया जा सकता है। जज्बातों को संगीत के माध्यम से बयां किया जा सकता है और उसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। बस सीने में दिल होना चाहिए और दिल में धड़कन होनी चाहिए जो एहसासों को समझ सके। गजलों के और बेहतरीन नगमों के इस म्यूजिकल कारवां को अपनी मंजिल के और थोड़ा करीब ले आते हैं इस अगली पेशकश के साथ। उसे पता था कि तनहा न रह सकूंगा मैं, उसे पता था कि तनहा न रह सकूंगा मैं, वो गुफ्तगू के लिए महताब छोड़ गया। गुमान हो मुझे उसका मेरे सरापे पर, ये क्या तिलिस्म है, कैसा सराब छोड़ गया।

अपनी बेताबी से उनको बेखबर समझे हैं हम, फिर भी कुछ है प्यार का उन पर असर समझे हैं हम। ये तड़पती चितवने, ये धड़कने दिल की उदास, ये तड़पती चितवने, ये धड़कने दिल की उदास, कोई समझे या नहीं समझे मगर समझे हैं हम। कहते हैं उम्र तो सिर्फ एक नंबर होती है, आप उतने ही जवान होते हैं जितना आप खुद को समझते हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपकी उम्र से नंबर हटा दिया जाए और आपसे आपकी एज पूछी जाए, उम्र पूछी जाए, तो क्या जवाब देंगे आप? सोच में पड़ गए? इसका जवाब एकदम आसान है। अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल पर हाथ रखिए, उन लम्हों को याद कीजिए जिन्हें आप फिर से जीना चाहते हैं, और बस उसी उम्र में जीने लग जाइए, और वही है आपकी उम्र। नंबर बढ़ते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सपने हैं, जो ख्वाब हैं, जो दिल करना चाहता है, जिस उम्र में रहना चाहता है, वही है आपकी असली उम्र। सुनते रहिए गारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निलय के साथ। दो घड़ी रोना, दो घड़ी मस्ती के रंग, आपकी आंखों का इनको खेल भर समझे हैं हम। देखकर भी हमको होठों पर हंसी आई नहीं, आज कुछ बदली हुई है वो नजर समझे हैं हम। तोड़ ले जाएगा कोई तुझको दम भर में गुलाब, प्यार के ये रंग होंगे बेअसर समझे हैं हम।

वेलकम बैक, मैं हूँ आपका रेडियो हम सफर निलय और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ रेडियो ब्रिस्वानी पर। आप सुन रहे हैं कारवाएं गजल। कभी मोहब्बत कीजिएगा तो ये शर्त रखिएगा कि सिवा मोहब्बत के कोई शर्त ना हो। ये बात बिल्कुल सही है, पर सच कहूं तो वो मोहब्बत नहीं जिसमें शिकायत ना हो। हम सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जहां प्यार है वहीं शिकायत की गुंजाइश रहती है। वैसे देखा जाए तो जिन्हें हम पसंद करते हैं उनके नखरे उठाने भी तो अच्छा लगता है ना। भाई जो प्यार करते हैं वो जानते हैं, अति मत कीजिए, ज्यादा नखरे मत कीजिए, वरना फिर वो बर्डन लगने लग जाता है, फिर उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, मतलब मजा नहीं आता, जिंदगी बोझ लगने लग जाती है। लेकिन थोड़े बहुत नाज नखरे अगर आप उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जब कुछ बातें उम्मीदों को भी नागवार गुजरती हैं और दिल टूट जाता है तो यहां पर एक बात कहने को दिल करता है कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे ख्याल आया, जिसका दिल हमने तोड़ा था वो जाने कैसा होगा। इसीलिए कहते हैं किसी का दिल मत तोड़िए। कार्मिक थ्योरी मालूम है आपको, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अभी नहीं तो कुछ देर बाद इसी जन्म में कभी ना कभी वो कर्म आपके सामने आएंगे जरूर। आप फिलहाल मेरे साथ रहेगा, मैं भी आपके सामने आऊंगा बहुत जल्द इन नगमों और गीतों के बाद। आप सुन रहे हैं कारवाएं गजल, आपके अपने रेडियो हम सफर निलय के साथ।

सौदा हमारा कभी बाजार तक नहीं पहुंचा, इश्क था जो कभी इजहार तक नहीं पहुंचा। यूं तो गुफ्तगू हुई उनसे मेरी, सिलसिला ये कभी प्यार तक नहीं पहुंचा। जाने कैसे वाकिफ हो गया तमाम शहर, दास्तान इश्क वैसी अखबार तक नहीं पहुंचा। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर निलय, और आप और मैं एक ही सफर के हम सफर हैं जिसका नाम है कारवाएं गजल। आज मैंने अपना फिर सौदा किया और फिर मैंने दूर से देखा किया कि हो गई दिल को कुछ उम्मीद सी, खैर तुमने जो किया अच्छा किया। वैसे देखा जाए तो हर शख्स अपनी खुद की नजर में आम तौर पर सही ही होता है, उसकी हर बात का उसके पास कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन होता है, लॉजिक होता है, क्या वजह थी जिसके कारण उसने ऐसा किया, ये कदम उठाए। शर्तें एक दूसरे की मंजूर थी यूं तो, शर्तें एक दूसरे की मंजूर थी यूं तो, पर मसौदा कभी करार तक नहीं पहुंचा। गहराई दोस्ती की हम नापते भी कैसे, रिश्ता हमारा कभी तकरार तक नहीं पहुंचा।

उसकी आंखों में आज भी काजल फैल रहा है। मैं भी मुड़ के जाते हुए देख रहा हूँ। अब मेरा भी जाने का वक्त हो रहा है और इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि जिंदगी की राह में आपको और मेरा साथ बना रहेगा। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। आपकी और मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करूंगा। इस इंतजार को बरकरार रखते हैं, फासलों का एहसास भी दिल में आने मत दीजिएगा। जाते जाते बस ये कहना चाहूंगा कि क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। सुनते रहिएगा रेडियो ब्रिजवानी, अभी इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, खुदा हाफिज़।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: पन्नो।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ

बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: saia suco, suco.
1: Ai, ai, ai, karu main kya suku suku. Ai, ai.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जीवन आधार सुनने वाले सभी भक्तों को सताक्षी का कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज सनातन धर्म का सबसे पावन और पवित्र दिन है। आज सावन का पहला सोमवार है। चारों ओर एटमॉस्फेयर खुशबू से भरा हुआ है। वातावरण में मिट्टी की सौंधी खुशबू है। सावन की रिमझिम फुहारें हैं और हर ओर गूंज रहा है हर हर महादेव। तो बस आज जीवन आधार में हम भी आपसे बात करेंगे प्रभु शिव की, सावन की, और ये सफर जो है ये भक्तिमय आनंदमय होने वाला है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ भक्ति सागर, रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

जीवन आधार सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। भक्तों, मन में ये प्रश्न अक्सर आता है कि आखिर सावन का महीना और सोमवार का दिन महादेव को इतना प्रिय क्यों है। तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सावन का महीना चतुर्मास का पहला महीना होता है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचालन और कल्याण का भार महादेव संभालते हैं। सोमवार का दिन चंद्रदेव से जुड़ा है और चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर सुशोभित हैं। जब सोम यानी चंद्रमा शीतल होते हैं तो वो शिव जी के मस्तक को शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए सावन के सोमवार को जो भी भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ का ध्यान करता है, उसके मन की चंचलता दूर होती है और जीवन में शांति आती है। आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ का ये एक और अत्यंत मधुर भजन। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ।

जीवन आधार सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। आज सावन का पहला सोमवार है और इस अवसर पे जीवन आधार में हम सुनवा रहे हैं आपको भगवान शिव से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे भजन जो आपको भक्ति रस से सराबोर कर रहे हैं।

सावन के सोमवार में खासकर भारत में शिवालयों में, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, महाकालेश्वर हो या किसी के घर के पास कोई छोटा सा शिव मंदिर हो, भक्तों का तांता लगा रहता है। आप भक्त भी जरूर इस वक्त अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो शिव के भजनों में और उनकी आराधना में डूबे होंगे। लोग जल, दूध, धतूरा और बेलपत्र लेकर शिव जी के दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। आज क्या आप जानते हैं कि शिव जी को त्रिदल यानी तीन पत्तियों वाला बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है? मैं बताती हूँ ना, तीन पत्तियां त्रिगुण सत्व, रज और तम की प्रतीक हैं। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने का अर्थ है कि हे प्रभु, मैं अपने तीनों गुणों और अपने अहंकार को आपके चरणों में त्याग रहा हूँ। और एक लोटा जल क्यों चढ़ाते हैं? महादेव को भाव

जीवन आधार सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। आज जीवन आधार में हम सावन के पहले सोमवार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, भगवान शिव का प्रिय महीना है सावन, और इसी सावन को जब पहला सोमवार पड़ता है या सोमवार के दिन पड़ते हैं तो भक्त आनंद से विभोर हो जाता है और भगवान को प्रसन्न करने की भरपूर कोशिश करता है, जैसे अभी हम और आप मिलकर कर रहे हैं। तो आइए इस कोशिश के साथ इस अगले भजन को सुनते हैं और भगवान शिव को इसे अर्पित करते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

भक्तजनों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के ही महीने में देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। मंथन से 14 रत्न निकले थे, लेकिन उससे पहले निकला था हलाहल विष, ऐसा विष जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। तब सब ओर त्राहिमाम मच गया। तब केवल शिव ही एक ऐसे थे जो संकट मोचन बने। संसार की रक्षा के लिए शिवजी ने उस विष को हंसते हंसते पी लिया, लेकिन माता पार्वती ने उनके गले को दबाकर उस विष को पेट में जाने से रोक दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और वो कहलाए नीलकंठ। विष की भयंकर जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल और जड़ी बूटियां यानी कि बेल, पत्र, भांग आदि अर्पित किया। तब से सावन में शिवजी का जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। जो दूसरों का दुख पी जाए और बदले में अमृत दे, वही तो शिव है। आइए उसी नीलकंठ महादेव का स्मरण करते हैं इस अगले भक्ति गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

जीवन आधार सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर और जीवन आधार में आपके साथ सताक्षी है। सावन का पहला सोमवार और सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उन्हीं आशुतोष शशांक को आज हम अर्पित कर रहे हैं ये सफर भी, ये हमारा भक्ति का एक पावन सा तोहफा भी। उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाले को, भगवान शिव को भी वो अत्यंत पसंद आ रहा होगा। आइए फिलहाल हम डूबते हैं शिव की भक्ति में इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम।

भक्तों, सावन सोमवार का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, इसका आध्यात्मिक संदेश है अपने भीतर के विष को बाहर निकालना, जो कि क्रोध, मोह या ईर्ष्या के रूप में हमारे अंदर है, और मन में शिव जैसी शून्यता और शांति लाना। आज के दिन आपको भी संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, नेचर की यानी कि प्रकृति की रक्षा करेंगे और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेंगे, और यही शिव की सच्ची पूजा है। तो हमारी जिन माताओं बहनों ने या जिन भक्तों ने आज व्रत रखा है और जो भक्त शिवालयों में दर्शन कर रहे हैं, उन सब पर बाबा भोलेनाथ असीम कृपा बरसाएं। आइए द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए इस गीत में लीन होते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

तो भक्तों, ये था जीवन आधार में सताक्षी का आपके साथ एक और भक्तिमय साथ। आज हमने आशुतोष शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ की वंदना की, आराधना की और उन्हें पुकारा, उनसे विनती की कि हमारे सभी कष्टों को और पापों को नष्ट कर हमें सुख की प्राप्ति कराएं। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बरसती रहे और आप सबका मंगल कल्याण हो, इसी मनोकामना के साथ अब लेती हूँ आज इस सफर से विदा। जय शिव शंकर।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच प्रोग्राम चांदनी का सफर। सो दोस्तों, नई सुबह है, नई एनर्जी है और दुनिया भर की लेटेस्ट अपडेट शामिल हो चुकी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का रेडियो शो यानी कि ब्रिसवानी में चांदनी का सफर। और इस सफर में आपका एंटरटेन होने ही वाला है डेफिनेटली, और बहुत सारी अपडेट्स जो है आपको मिलने वाली है। सो अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए ओनली ऑन रेडियो ब्रिसवानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को कुछ ब्रिस्बेन की टॉप न्यूज के साथ। तो दोस्तों, विक्टोरिया पार्क का एक बड़ा प्लान जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स को लेकर क्वींसलैंड गवर्नमेंट ने विक्टोरिया पार्क प्रिसिंक्ट का नया जो कॉन्सेप्ट है वो प्लान रिवील किया है। अब प्लान में जो प्रपोज्ड 63,000 सीट स्टेडियम, नेशनल एक्वेटिक सेंटर, एक्सपेंडेड पार्क लैंड्स, वेट लैंड्स और पब्लिक स्पेसेस जो है वो शामिल है। अब जो गवर्नमेंट है इसे ब्रिस्बेन के फ्यूचर के लिए दोस्तों एक मेजर लेगेसी प्रोजेक्ट बता रही है, लेकिन क्रिटिक्स ने ट्रांसपोर्ट, पार्किंग और कॉस्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। अब दोस्तों, जो ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन की जो स्काईलाइन और स्पोर्टिंग फ्यूचर दोनों अब भाई बदलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये बजर जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके टेस्ट में भी पास होगा या नहीं। जी हाँ, तो हम जानेंगे बहुत सी बातें और भी और इंतजार करेंगे कि ये वाकई ही पास होगा या नहीं। तो आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में। आइए एंजॉय करते हैं नेक्स्ट राइड।

हाँ जी, तो इसी ट्रैक के बाद एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स से आने वाली है। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऑस्ट्रेलिया के एथलीट्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, ट्रैक एंड फील्ड में ऑस्ट्रेलिया ने एक ही दिन में 7 गोल्ड मेडल्स जीतकर हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दी है। मैंस 4x10 मीटर यानी जो रिले रेस हुई थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता है और ये इवेंट में ऑस्ट्रेलिया का 1974 के बाद पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड था। दोस्तों, मैट डैनी ने दोस्तों डिस्कस में गोल्ड और फिर कर्टिस मार्शल ने पोल वॉल्ट में गोल्ड जीता है। अब ग्रीन एंड गोल्ड ने दोस्तों ग्लासगो में ना कमाल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के एथलीट्स ने मेडल्स के साथ ही साथ भाई फैंस का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो भी गोल्ड कर दिया है। जी हाँ, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और भाई, अब गोल्ड ही गोल्ड हो रहा है तो चलिए आपको गोल्ड वाला गीत भी सुना देते हैं। सुपर हिट्स गीत आप सब इंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन 90.4।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की तरफ और बात करते हैं ब्रिस्बेन ब्रोंकोस की। दोस्तों, ब्रिस्बेन ब्रोंकोस के फैंस के लिए ये जो खबर है थोड़ी सी भी डिसअपॉइंटिंग रहने वाली है। जी हाँ, डिफेंडिंग एनआरएल चैंपियंस ब्रिस्बेन ब्रोंकोस 2026 के फाइनल्स रेस से ऑफिशियली एलिमिनेट हो गए हैं और न्यूकैसल नाइट से हार के बाद। दोस्तों, यानी कि जिस टीम ने ना पिछले सीजन चैंपियनशिप जीती थी वो इस बार फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाई है। ब्रोंकोस के लिए दोस्तों ये सीजन जो है डेफिनेटली एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स में हर सीजन ना एक नई कहानी लेकर आता है। तो देखना होगा ये कि ब्रिस्बेन ब्रोंकोस अगले सीजन में भाई किस तरह कमबैक करते हैं। तो चलिए फिर हम आपको सुनाते हैं अब नेक्स्ट ट्रैक। निराशा नहीं होना भाई, निराश चीज जो है ना लाना नहीं है, कोई बात नहीं, कभी हार कभी जीत चलती रहती है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक जी, रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं चाने का सफर। तो आशा करती हूँ ये गीत सुनकर और ये अपडेट जानकर आप सभी को एनर्जी तो आ ही रही होगी और साथ ही साथ मजा भी आ रहा होगा। तो दोस्तों, अब जी हम थोड़ी सी बात करते हैं ब्रिस्बेन में होने वाले एक शानदार इवेंट की। जी हाँ, अगर आपको ना लाइव म्यूजिक पसंद है तो ये खबर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, लॉफे अपनी अ मैटर ऑफ टाइम टूर के साथ आज रात ब्रिस्बेन एंटरटेनमेंट सेंटर में परफॉर्मेंस देने वाले हैं, यानी कि अपनी परफॉर्म जो है वो करने वाले हैं और ये कॉन्सर्ट जो है शाम 7:30 बजे शुरू होने वाला है। अगर आप दोस्तों जैज, पॉप और फिर सोलफुल म्यूजिक के शौकीन हैं तो ये शाम जो है आपके लिए यादगार बन सकती है। जी बिल्कुल दोस्तों, म्यूजिक के साथ ना एक रिलैक्सिंग और खूबसूरत शाम बिताना हर कोई चाहता है, तो ये शो ना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ब्रिस्बेन अगर आप जा रहे हैं ना तो इस कॉन्सर्ट में, तो हमें भी जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा है। तो आइए इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो इस गीत के बाद एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का वेलकम है। तो चलिए फिर अब टाइम को वेस्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास है जी बहुत सारी अपडेट्स, और अब चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया क्विक न्यूज की तरफ। यहाँ पर क्या अपडेट्स हैं तो दोस्तों जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ना इस वक्त जो है आप सभी जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर स्पोर्टिंग एक्साइटमेंट जो है वो अपने पीक पर है, राइट। वहीं पर ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स लगातार शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और देश के लिए मेडल्स तो जीत ही रहे हैं। वहीं पर ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक्स का काउंटडाउन भी जारी है। ओलंपिक्स को लेकर दोस्तों स्टेडियम, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और ग्रीन स्पेस पर काम जो है और प्लानिंग लगातार चर्चा में है। यानी कि ब्रिस्बेन आने वाले कुछ सालों में ना और भी बड़ा बदलाव देखने वाला है। तो ब्रिस्बेन आने वाला वक्त जो है स्पोर्ट्स और सिटी डेवलपमेंट दोनों के लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस वेट रहेगी, यानी आने वाले सालों में ब्रिस्बेन की तस्वीर बदलने ही वाली है टॉटरी। तो हमें मतलब बिल्कुल इंतजार रहेगा कि क्या कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज, यानी कुछ अच्छा तो मिलना चाहिए ना। जब ऐसी न्यूज सुनते हैं कुछ ना कुछ मतलब प्राउड होता है हमें, राइट। तो बस ये प्राउड ऐसे ही हमारा बना रहे। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले गीत की तरफ, क्योंकि भाई और भी बहुत सारी बातें जानने के बस बहुत सारी है आपको देने के लिए। अब पहले सुन लेते हैं ये गीत, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी अपडेट सुनकर, न्यूज सुनकर थके होंगे ना, तो चलिए फिर थोड़ा सा हम अपने दिमाग को मोटिवेट कर लेते हैं, अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं। दोस्तों हमेशा में ना जब प्रोग्राम थोड़ा एंड होने वाला है ना, एंड की कतार पे होता है, तो मैं आपको कुछ ऐसे विचार बता देती हूँ जो हमें फिर से एनर्जी से भर देता है। दोस्तों कहते हैं हर सुबह हमें एक नया चांस देती है, मैं हर प्रोग्राम में आपको बोलती हूँ। अब ये सुनिए, जो कल नहीं हुआ, मान लीजिए आपने कुछ सोचा है वो कल आपका नहीं हुआ, तो हम क्या सोचते, रहने दो भाई ये तो होगा नहीं। लेकिन दोस्तों कल जो नहीं हुआ, जरूरी नहीं है कि आज भी वो काम ना हो। हमें क्या करना है, बस ट्राई करते रहना है। कभी कभी दोस्तों हमें लगता है कि चीजें ना हमारे हिसाब से नहीं हो रही, लेकिन याद रखिए हर दिन एक नई शुरुआत है। तो आज अपने लिए एक छोटा सा गोल तैयार रखिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराइए और उस गोल की तरफ एक छोटा सा कदम जरूर बढ़ाइए भाई, क्योंकि हर उसमें बोलती हूँ छोटी छोटी कोशिशें ना एक दिन बड़ी कामयाबी जरूर बनती है। हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। सो ब्रिस्बेन, कीप स्माइलिंग, कीप बिलीविंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो बस डरना नहीं है, बस जो है कर दिखाना है। हम भी किसी से कम नहीं है भाई, तो आइए मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, सुनाती हूँ आपको ये गीत ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के रेडियो शो में यानी कि आज रेडियो ब्रिस्वाने में चाणक्य के सफर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हमने बात की है ब्रिस्बेन की बड़ी खबरों की, स्पोर्ट्स अपडेट की, एंटरटेनमेंट की और आने वाले ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स की। उम्मीद है दोस्तों आपकी ये सुबह थोड़ी और अच्छी, थोड़ी और पॉजिटिव जरूर बनी होगी। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट आरजे चाणक्य जैन। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वाने में अपनी दोस्त चाणक्य की आवाज। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपने दिन की शुरुआत एक बड़ी सी भाई स्माइल के साथ जरूर कीजिए, क्योंकि हमेशा कहती हूँ स्माइल बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ, आपके ना एक प्यारी सी स्माइल से ना दूसरों के दुख भी दूर हो जाते हैं। क्या पता वो किस सिचुएशन में हो और आपकी एक प्यारी सी स्माइल, आपकी एक मोटिवेशन वाली बातें और आपकी एक पॉजिटिव जो वाइब है ना, वो सामने वाले को जरूर खुश कर देती है और उसकी भी एनर्जी जो है वो पॉजिटिविटी से भर देती है। तो भाई हमेशा पॉजिटिव रहिए, स्माइल रखिए। अब हम कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों, नई बातें और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत एंड हैव अ ब्यूटीफुल मंडे ब्रिस्बेन। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

लता जी के लिए कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, लेकिन मैं अपने अजीज दोस्त साहिल धानवी के एक शेर को आप सुना देता हूं। मगर इस रात की तन्हाई में यूं अचानक कई आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत तड़प कर नागहा आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे, शहद सा घुल गया तलखाबाए तन्हाई में, रंग सा फैल गया दिल के स्याह खाने में, देर तक यूं तेरी मस्ताना सदाएं गूंजी, जैसे फूल चटकने लगे वीराने में।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मोरक्को से स्पेन की ओर उमड़ी 60,000 लोगों की भीड़। स्पेन के सेउटा में उस समय मानवीय संकट पैदा हो गया जब 60,000 माइग्रेंट्स मोरक्को के बॉर्डर को पार करके जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के पास दाखिल हो गए। इस अचानक हुई घुसपैठ के कारण इलाके में भारी भीड़भाड़ और तनाव फैल गया, जिसकी चपेट में आकर 67 लोगों की मौत हो गई। स्पेनिश सरकार के अनुसार इनमें से 48,000 से ज्यादा माइग्रेंट्स कुछ ही घंटों के भीतर वापस मोरक्को लौट गए। वापस लौटने वाले कई लोगों ने सेउटा के अंदर बेहद खराब और दयनीय हालत का हवाला दिया। जली हुई गाड़ियां, पत्थरों से पटी सड़कें और भारी सुरक्षा। अशांति के बीच हुआ पीओके में दूसरे चरण का मतदान। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का दूसरा चरण हुआ। इस दौरान नए सिरे से अशांति देखी गई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों के बाद मुजफ्फराबाद के कई इलाकों में लोगों ने जली हुई गाड़ियों, पत्थरों से भरी सड़कों और भारी सुरक्षा व्यवस्था देखी। 53 सदस्यों वाली विधानसभा की 45 सीधे चुने जाने वाली सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से ये दूसरा चरण रहा। हालांकि चुनाव पर लगभग 2 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शनों, चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों, राजनीतिक बहिष्कार और सुरक्षा बलों की सख्त कार्यवाही का साया छाया रहा। इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास फेरी में लगी भीषण आग, 5 लोगों की मौत, 41 लापता। इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास समुद्र में एक फेरी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। फेरी पूर्वी जावा प्रांत के सुराबाया से दक्षिण सुलावेसी के मकासर शहर जा रही थी, तभी यात्रा शुरू होने के कुछ घंटे बाद इसमें आग लग गई। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। देश के युवा ड्रग्स के खतरे को समझें, नशा मुक्त युवा अभियान में पीएम मोदी का जेन जी के साथ सीधा संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। ये अभियान मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान की शुरुआत होगी। इस पहल का मकसद युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रखने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक बदलाव के दूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्कूल और कॉलेज के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड पर बैन, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के 50 मीटर के दायरे में ज्यादा फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। ये एडवाइजरी जुलाई में 134 स्कूलों और कॉलेजों के आसपास मौजूद फूड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के FSDA द्वारा किए गए निरीक्षणों के बाद जारी की गई है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रेस वाणी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।
1: जी हाँ दोस्तों, हम आगे हैं। सॉरी फॉर द डिले, वी कुड फाइंड आवर रियल ओपनर। खैर कोई बात नहीं, आप सभी का स्वागत है। कुछ अभी थोड़ा सा खोया खोया लग रहा है।
2: हाँ, आई नो, ऑफ कोर्स। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन।
1: We both are back. Anyway, we are back.
2: So good to see you.
1: I don't know. Good to see you too. I don't know if my mind is back.
2: No, mine isn't either. Like, not 100% here.
1: Yeah, but physically anyway.
2: Here, but anyway.
1: सभी को बहुत सा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और एक खुशखबरी है कि मालूम नहीं क्या हुआ, हमारे जो लिस्टर बेस इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि अगर आपको बताऊं तो आप शायद यू वोंट बिलीव कहां कहां से लोग सुन रहे हैं। बता दूं थोड़ा?
2: हाँ।
1: अच्छा, रशिया फेडरेशन से लोग है, यूनाइटेड स्टेट्स में तो भरे हुए हैं, थैंक यू वेरी मच, जर्मनी में है। अच्छा सुनिए, स्पेन से लोग सुन रहे हैं, मलेशिया में कोई सुन रहा है, मोरक्को में, मेक्सिको में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वहां पर भी लिस्नर है, कनाडा से है, फिलीपींस, हाउ अबाउट दैट, अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील। मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी लोग इंडियन ओरिजिन के काम कर रहे होंगे शायद। वुड यू बिलीव दिस, अ ब्यूटीफुल कंट्री, अ ब्यूटीफुल आइलैंड वेयर आई डिड विजिट, आई लव्ड इट। और बहुत फिजी से मिलता जुलता, जमैका।
2: जमैका,
1: यू नो द इंडियंस दे आर वेरी लॉन्ग टाइम अगो। और सीरिया अरब रिपब्लिक, सीरियन राइट,
2: सीरियन।
1: ओके, जमैका में दो और है, और सीरियन अरब रिपब्लिक, इंडोनेशिया, वेनेजुएला, और राइट, आई होप यू गाइस आर डूइंग ओके ओवर देयर, होप थिंग्स आर रनिंग ओके। वेनेजुएला में काफी लोग हैं, ब्राजील में है, और अनदर ब्राजील, स्पेन, अनदर स्पेन, पैलेस्टीनियन टेरिटरी, वेलकम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेलकम, और साथ में फिर से ब्राजील, मलेशिया, इंडिया में है, इंडिया में गए भाई, सुबह है वहां बहुत अभी, लेकिन आप सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और ब्राजील में, तो ब्राजील में काफी लोग सुन रहे हैं, तो देखिए कहां कहां पर हमारे लोग,
2: स्वागत है,
1: कैन यू बिलीव
2: दैट,
1: वी बेटर बी अप टू मार्क,
2: यू बेटर,
1: लॉट ऑफ पीपल, ओके, लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग,
2: यस।
1: तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं। और सबसे पहले ब्रिस्बेन का, ओ एवरीथिंग इज वेट
2: किया, थैंक यू,
1: माफ करना, इट वाजंट यू, बिकॉज देयर वर अदर थिंग्स गोइंग ऑन, एज यू नो वी कुड नॉट कनेक्ट प्रॉपर्ली बिकॉज टेलस्ट्रा हैड चेंज्ड माय स्टैटिक आईपी एड्रेस विदाउट टेलिंग अस, एंड लॉट ऑफ प्रोग्राम कुड नॉट गो ऑन एयर, and it took us a long time to get it back on track again, especially when I wasn't here, and dur se kaam kar raha tha main, aur yahan par samay samay se mere paas telephone ka bhi connection nahi tha,
2: yeah,
1: internet ka connection nahi tha, so it was very hard for the radio, I suppose, you know, kuch programs nahi gaye the, dosto maafi chahte hain, kyunki yahi sab hua tha, और कई बार मैंने भी संडे को तैयार किया था प्रोग्राम देने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ टेलस्ट्रा चेंजिंग द स्टैटिक आईपी एड्रेस,
2: आई कुडंट
1: गेट ऑन, सो एनीवे ये सब कहानी है दोस्तों, ये सब होता ही रहता है, ये तो टेक्निकल, वाइल टेक्निकल थिंग्स आर ओके, काफी इसमें बाधा भी आ जाते हैं ना समटाइम्स, या सो आज के लिए कहा गया, अभी तो फिलहाल 10.61 डिग्रीज है, लेकिन आई थिंक वी आर राइट इन द मिडल ऑफ विंटर,
2: यस वी एक्चुअली वी इन द लास्ट मंथ ऑफ विंटर,
1: ओह दैट्स अ कोल्ड विंटर इज़न्ट इट,
2: बिकॉज़ स्प्रिंग इज़ वी आर द स्टार्टिंग सितंबर
1: इन द स्टार्टिंग ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ राइट
2: वी
1: आर इन द स्टार्टिंग ऑफ द लास्ट मंथ
2: ऑफ विंटर, ओके, यस
1: डिड यू गेट व्हाट आई सेड,
2: यस फाइनली आई डिड,
1: Okay.
2: Starting of the last. Okay.
1: Yeah. और क्या बताऊं दोस्तों, तो आज पार्टली क्लाउडी है, बारिश नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर 22 रहेगा. और अगर देखे कल के लिए कहा गया है मोस्टली सनी, 11 एंड 24 रहेगा. और वेंसडे को मोस्टली सनी, 11 एंड 25 डिग्रीज सेंटीग्रेड. थर्सडे को वी गोना डिप डाउन टू 9 डिग्रीज मिनिमम एंड देन 23 नो रेन. फ्राइडे को पार्टली क्लाउडी, 11 एंड 23 साइड 1 मिलीमीटर ऑफ रेन. सैटरडे को पार्टली क्लाउडी, 11 एंड 23 1 mm. और संडे को पार्टली क्लाउडी, 11 एंड 25 नो रेन. तो क्लाउडी दिन है दोस्तों सभी बगल अब हमारे यहाँ ब्रिस्बेन में. और या सो दैट्स अबाउट इट. और what is happening on the road? Ipswich motorway, Oxley stationary vehicle, no blockage is bound towards Rockley. Okay, all right.
2: So that's all for the traffic.
1: Yeah.
2: Okay.
1: और कुछ news पढ़ लेते हैं, Fiji और Australia का news. ठीक है, shall we?
2: जी, of course.
1: Where are we? फिजी के इकोनॉमी पर इम्पोर्ट्स का प्रेशर बढ़ रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ फिजी के लेटेस्ट इकोनॉमिक रिव्यू के मुताबिक फिजी का ट्रेड डिफिसिट वाइडन हुआ है. मतलब कंट्री जितना सामान ओवरसीज से खरीद रहा है उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट्स कम है. ठीक है, ओके. ये फिजी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की ओर से था. एक सीरियस मैटर में फिजी पुलिस एक 12 ईयर ओल्ड बॉय की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रही है. पुलिस विटनेसेस के स्टेटमेंट कलेक्ट कर रही है. आफ्टर जी हाँ, द बॉडी वाज रिपोर्टेड मिसिंग एंड लेटर फाउंड डेड नियर हिज होम. दैट्स अकॉर्डिंग टू फिजी सन. और हेल्थ सेक्टर में भी कंसर्न है. फिजी में हाई रेट्स ऑफ टूथ डिके को लेकर हेल्थ अथॉरिटीज कंसर्न रेज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली डेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लेकर. फिजी ब्रॉडकास्टिंग की ओर से, यू नो फिजी पीपल यूज्ड टू हैव वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ टीथ. When I went to, can I tell you the story? I might have said it before,
2: but of you did. But some people that have only joined us recently,
1: I think I was in the second or third grade when I was in Christchurch, New Zealand, going to school there. So over there, they have free dental. Well, used to be. That's way back, right? Mm-hmm. Used to be free. When we used to get fish and chips for 5 pence, that was pound shilling pence then. Okay, and so I went to this training facility where everybody goes for the teeth in the primary, all the schools and government. That's that, right? New Zealand government. So, maine gaya. This is in Christchurch. Mm. I came home, I had a locked jaw.
2: Oh.
1: You know why?
2: No.
1: Because being from Fiji, and I think they had a lot of fluoride in the water or what have you, you know, eating sugar cane and all this stuff, you know. I'm paying for it now. So when I went there, they saw my set of teeth, right?
2: Yep, yep.
1: And all the dental assistants and trainees, they went, and honest, you will not believe this. They went through one by one looking at my teeth.
2: You had such a good set of teeth.
1: Yeah. Because maybe the Fiji water or whatever it was.
2: Yeah, we used to have fluoride in our water
1: and it was in South Africa.
2: Yep.
1: I came home, I could not eat. This is a true story.
2: Yeah.
1: It's not a story, it's a fact.
2: It's a fact.
1: And yeah, so I thought I would put that in. Okay, sports. टूर्नामेंट के लिए, जी हाँ, स्पोर्ट्स में फिजी पर्ल्स ने फिजी इन्विटेशनल टूर्नामेंट के लिए दो स्क्वाड अनाउंस किए हैं. टूर्नामेंट आज सुबह के वुंदाफोन एरिना में शुरू हो रहा है. ओके, और फिजी फुटबॉल में बा ईपीएल टाइटल की तरफ स्ट्रांग पोजीशन में है. ओके, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन मोटरिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज. टेम्पररी फ्यूल एक्सरसाइज रिलीफ खत्म हो रहा है. इसका इफेक्ट होलसेल पेट्रोल प्राइसेस पर अप्रोक्सीमेटली 16 सेंट्स पर लीटर तक हो सकता है. So drivers ko coming days mein petrol prices par nazar rakhni hogi. You must be giggling and laughing inside.
2: No.
1: Oh, come on.
2: Come on.
1: I would be fathers in your shoes.
2: So mean.
1: Yeah, because you drive electric cars.
2: Doesn't matter.
1: You don't have to worry about people like
2: I
1: us.
2: I do worry.
1: Okay, thank you very much.
2: I do worry.
1: Australia ka housing market bhi headlines mein hai. Latest report indicate karte hai, hai ki housing downturn ab country ke ek aur area mein spread ho rahi hai. Giving buyers more negotiating powers in some markets. Okay, Sportsman Australia. De Glasgow 2026 Commonwealth game ko tremendous performance ka saath finish kiya. Aye, this is all Hindi-English mix.
2: Yeah, I'm just, news today. I'm just listening yeah, to you.
1: 70 gold medals ke saath Georgia Barker closing ceremony mein Australia, Australian flag. बेरा बने और ब्रिस्बेन में नया ई स्कूटर लॉज शुरू होने के सिर्फ 7 मिनट्स बाद ही एक 28 ईयर ओल्ड मैन को एलिजेडली अल्कोहल लिमिट के ऊपर ई स्कूटर राइड करने के लिए चार्ज किया गया है.
2: वाओ,
1: बस इतना ही है. मुझे याद है मेरे एक अंकल जी फिजी में, ये थोड़ा ड्रिंक ज्यादा पसंद करते थे ना. This is, you know, where Fiji developed that place, you know, Nandi Me.
2: Okay.
1: What's that place called?
2: I don't know.
1: We were there. You guys went there too.
2: Oh, Denarau.
1: Denarau.
2: Right, right.
1: So they couldn't drive to there to have drinks because there were cops everywhere, right?
2: Okay.
1: So this guy, my uncle, used to stay by the sea. I think he's got Fantasy Island or something. There's a development there.
2: Okay.
1: And his buddy had one of these
2: scooter,
1: scooter type thing. So they used to go. They used to go in that little thing, sea, samundar mein.
2: Huh.
1: Wahan se jaakar peekar fir waap.
2: Arre.
1: But bichare pakda gaye inme. Kisi ne report kar diya. Khair chalo, geet sunte hain dosto, fir waapas aayenge. Oh my God. Things people do.
2: Yeah.
1: Okay, here we go. Number hai 0430031701.

0: I listening to my...
1: I also just wondering if I can hear my... Oh, yeah, I can.
0: You can?
1: I think I can,
0: okay.
1: Yeah. Okay.
0: Monday हमारा यहाँ पर ऐसे होता है कभी-कभी दोस्तों हम...
1: कभी-कभी दिल में ख्याल आता है.
0: कभी-कभी दिल में ख्याल आता है.
1: And I think, why do we have Mondays?
0: Okay.
1: All right. You know, you didn't motivate us.
0: Okay. Did it? Okay.
1: No. And it's Monday, you know, we need a lot of motivation.
0: I found something very beautiful. Mm. To all my dear listeners that are listening and all the new listeners that have come on board, right?
1: Yeah.
0: We really, really welcome you. Okay. Oh, sorry, before I forget, if you have a Telstra app.
1: App, yep.
0: Right?
1: Mm.
0: You can...
1: Telstra app.
0: Yeah, I've got a Telstra app.
1: Oh, okay.
0: Till 12th, I think, of this month.
1: Yep.
0: At 7-Eleven, if you go with that, you have to generate a code, barcode. Very easy.
1: Mm.
0: It's just all done over there.
1: Okay.
0: One pay 24 hours, you get 10 cents off per liter.
1: Fuel. Okay.
0: It doesn't concern you, but...
1: No, hang on. My entire family still fills petrol, diesel... So.
0: Okay. अच्छा देखिए दोस्तों जिंदगी में हम अक्सर भगवान से कहते हैं कभी कभी थोड़ा रिश्वत भी दे देते हैं ना हमेशा हम भगवान से कहते हैं ए प्रभु मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर दो लेकिन शायद हमें ये कहना चाहिए ए प्रभु प्रॉब्लम्स चाहे रहें बस मुझे उनसे लड़ने की हिम्मत दे दो ठीक है प्रॉब्लम तो होना चाहिए नहीं तो भगवान को याद कैसे करेंगे जब कुछ पिराता ए राम ए भगवान यू नो हाय अल्लाह करते कि नहीं
1: हाँ
0: ओके देखिए क्योंकि समुन्दर कभी हमेशा शांत नहीं रहता लेकिन एक अच्छा सैला जो होता है तूफान में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है ओके तो याद रखिए दोस्तों हर सुबह जब आंख खुलती है वो भगवान का एक नया गिफ्ट है हमारे लिए कल क्या हुआ वो हम बदल नहीं सकते कल क्या होगा वो हम जानते नहीं लेकिन आज का दिन हमारा पास है ओके कल का कुछ खबर नहीं अभी एक दो सेकंड में क्या होगा शायद हमें नहीं
1: याद है
0: बहुत कुछ ऐसे है जो भगवान ने हमसे छिपा कर रखा है क्योंकि अगर उसे हम जान जाते हैं तो हमारा लाइफ में रहना भी मुश्किल हो जाता मैं बोलता हूँ लिखा नहीं है मैं कह रहा हूँ अगर भगवान सब कुछ बता देते
1: yeah.
0: तो our life could have been not worth living too if you know what I mean okay तो कुछ ऐसे बातें हैं कभी कभी लोग छिपा लेते हैं जब भगवान भी छिपा लेता है तो फिर क्या बात तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों रेडियो बिजवाड़ी
1: आप सुन रहे हैं It's like every day is a surprise. You don't know what's coming around the corner.
0: जब आप उठते हो सुबह हाँ that's true. जब आप उठते हो सुबह अगर आपका पर कुछ problems है really very big problems, you say, चलो यार एक और दिन साल आप क्या करेंगे? That's one way of looking at it.
1: Well, just thank one God way. That you were given another day.
0: But that's one way of looking at it.
1: And you got help.
0: The other way is...
1: Yeah.
0: कि चलो भगवान ने एक दिन और दिया मेबी वी कैन मेक इट राइट मेबी वी कैन डू समथिंग विद इट यू नो व्हाट आई मीन
1: राइट
0: तो हर सुबह जब उठते हैं दोस्तों तो भगवान को उसी समय हमें धन्यवाद देना चाहिए ठीक है
1: yes.
0: तो चलिए रेडियो totally. बिजवाड़ी आप सुन रहे हैं 0404-3003-1701 या स्टूडियो नंबर इज 3279-1701.
1: Now, hang on. Yeah. For all our listeners that are listening from far and wide across the globe,
0: yeah,
1: you need to add on the code +61. Yeah. And if you're dialing the studio number, then it's +61732791701. Or if you are calling Bhaiji's mobile or sending a text, it is +61 43003 1701.
0: You finally you have memorized it. You are a smart lady.
1: What memorized?
0: By the way, I'm so smart. Up till now, my headphone was off. I just put it on.

जी हाँ दोस्तों, आपने से टॉम जोन्स से इस गीत को सुना. से टॉम जोन्स, ही वॉज नाइटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकंड एट बकिंगम पैलेस.

0: आगे बढ़ते हुए, कैसा लगा ये गीत आपको? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों. और यू माय वर्ल्ड, यू माय
1: ब्यूटीफुल
0: ब्यूटीफुल सॉन्ग. ओके, व्हाट एल्स वी गॉट इन स्टोर? टाइम इज
1: रनिंग अवे फ्रॉम अस.
0: 22.
1: Yep.
0: Yeah. I love this song.

और इस गीत के साथ दोस्तों 8:26 हो गए हैं, हमारा साथ रहेगा 9 बजे तक, और फिर 9 बजे से भूलना मत, आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ, और फिर 11 बजे से संदेश के साथ आप सुनेंगे पंजाबी प्रोग्राम, और 3 बजे से निविया के साथ कार्यक्रम आप जरूर सुनिए दोस्तों। रेडियो मिजबानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान।

0: Okay. Mm-hmm. Australia's Helping Wildlife, up to 200,000 in grants, is being made available through WIRES to support wildlife rescuers, rehabilitation organizations, and community conservation projects around Australia. Okay. All right. The other thing here, communities cleaning up Australia. Keep Australia Beautiful Week starts today, 3rd August, with communities encouraged to get together and clean up the neighborhood.
1: Mm.
0: Okay. Get involved. And here's a lovely little international one. A 16-year-old rookie lifeguard has been celebrated after helping rescue a 10-year-old boy from the ocean. The young lifeguard's rescue effort went viral. ओके देखिए कहते हैं कि दुनिया में बुरी जो खबरें हैं बहुत जल्दी हेडलाइन बन जाती है दोस्तों, लेकिन अच्छाई भी हर रोज हो रही है. किसी को साफ पानी मिल रहा है, कोई जानवर की जान बचा रहा है, और कोई अनजान इंसान की मदद कर रहा है. गुडनेस इज स्टिल अलाइव. बस कभी कभी हमें उसकी खबर ढूंढनी पड़ती है, विच इज वेरी ट्रू. ज्यादातर हम जो न्यूज सुनते हैं ये बुरे न्यूज होते हैं या ऐसा कुछ होते हैं, लेकिन फील गुड अच्छा न्यूज बहुत कम सुनने को मिलता है. Maybe we should start a paper where we giving all the good news, happy
1: only
0: news.
1: Good news. Yeah.
0: Brisbane, something. Where everybody
1: something,
0: can go.
1: Something.
0: Yeah. And read something and feel good. I feel stupid today.
1: Okay. It's a silly season.
0: Yeah.

0: नहीं सकता।
1: जी हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। ये रहा बहुत प्यारा संगीत रफी साहब की आवाज में। और फिल्म बचपन का गाना था दोस्तों। जी हाँ, फिल्म बचपन। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और जैसे मैंने कहा, इस कार्यक्रम के बाद में आप भूलना मत, आप हो जाएंगे God has given you a voice. Why कह नहीं सकता?
2: Who asked you? Who said that?
1: विनी, कभी कभी काल, कभी कभी हम उस voice को नहीं use करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हम आंख देखकर, एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। It's not always the words that are important. The words can be very, very dangerous too. You know, sometimes it just can mean the wrong way. Eh?
2: Oh my God!
1: But lekin, okay. What I'm trying to say is this. Okay. थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस विनी, मे बी यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सॉन्ग। ओके, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और नंबर है 04300031701। अब तो समय थोड़ा कम हो गया दोस्तों, लेकिन चलो।

0: मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। किसी ने लिखा भाई कह दो आपका मन हल्का हो जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन तो गाना है दोस्तों, किसको कहूँ क्या कहूँ
1: किसको
0: प्यार करूँ,
1: किसको प्यार करूँ
0: कैसे प्यार करूँ, ये भी है वो भी है।
1: I know.
0: Then from that the other song I comes up in my mind is ये परी कहाँ से लाऊं दुल्हन इसके बनाऊं, इसको समझना आए something।
1: Oh gosh, yeah.
0: Oh, that's another song. समझ ना आए दिल को कहां ले जाए सनम तेरी कसम। I can't find that song.
1: Oh, okay. But now I'm going to play a song which will completely change everything.
0: Right. Yep.
1: Sorry. I know you are trying to build up something.
0: Ooh, love this song.

0: और दोस्तों उस घड़ी आ गया जब हम यहाँ से आपको छोड़कर चले जाएंगे और फिर आएंगे कल लौट कर, और आपको भी हमसे वादा करना है कि आप भी लौट कर आएंगे.
1: जी,
0: इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ कमांड.
1: ओह माय गुडनेस,
0: या
1: यू कांट ऑर्डर पीपल अराउंड.
0: आई नो, ये तो खाली मेरा एक जोक था दोस्तों. आप लोग तो बहुत प्यारे हैं, आप तो जरूर आएंगे. और मिलते हैं कल दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा.
2: चलते
1: नमस्ते,
2: चलते
0: बाय बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन, इवन द पीपल यू डोंट लव.
1: यस, एंड यू हैव पेट्स.
0: इज देयर एनी सच थिंग दैट यू डोंट लव?

गुड मॉर्निंग अजी, कैसे हैं? क्या हाल है? सब जिंदगी में चंगा, बढ़िया, मजेदार है कि नहीं है? पे ऐसा तो नहीं कि आप हमसे कह देते हैं कि अच्छे हैं और अंदर ही अंदर अच्छे ना हो? हाँ, देखिए, हम ना वो डॉक्टर हैं जो दूर रहते हैं, लेकिन आपकी बीमारी हम पहचानते हैं। हमें पता है कि कब मूड अच्छा है, कब नहीं है, इसलिए झूठ मत बोलिएगा भाई। अच्छे हैं तो अच्छे रहिए और हमें बताइए कि अच्छे हैं। और अगर लाइफ में कुछ ऊपर नीचे है तो यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि सब कुछ बेहतर होगा, है ना? क्योंकि इंसान का भरोसा है जो गलत को भी सही कर देता है। और इसी सही गलत के फेर में ना पड़ते हुए हम सब कुछ अच्छा है ये मानकर शुरू करते हैं आज के ब्रेकफास्ट शो को। दोस्तों, मैं हूं सताक्षी आपके साथ और लेकर आई हूं आपके लिए एक बार फिर से हमारा मॉर्निंग शो इट हैपेंस। जी हाँ, आज फिर से आपके साथ कुछ बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग ट्रैक्स को बांटूंगी और जिंदगी के वो एहसास जो इस सुबह आपके लिए जानने और समझने बहुत जरूरी हैं, उन पर भी जरा बात होगी। आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। अभी सुनते रहिए मुझे और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रसारणी पर।

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो प्रसवानी 107.1 AM पर। इट हैपेंस में ये वक्त है अभी उन लोगों के साथ जरा गुफ्तगु करने का जिनके लिए आज का पल आज का दिन बहुत ही हसीन है। जी हाँ, सबसे पहले बात कर ली जाए उनसे जिनका आज बर्थडे है। तो भाई देखिए, जिंदगी में 365 दिनों में, मतलब लाइफ के जो साल के 365 दिन होते हैं उनमें एक दिन ऐसा आता है जब आपका बर्थडे होता है और इस दिन आप हो जाते हैं स्पेशल पर्सन जिसको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, बधाइयां मिलती हैं। तो भाई हमारी रेडियो प्रसवानी की भी बधाई एक्सेप्ट कीजिए और हम विश करते हैं कि ये पल जो है ये इतना शुभ हो कि आपकी पूरी जिंदगी को शुभ कर दे। इस वक्त जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हें विश करूंगी और आप एक दूसरे के साथ यूं ही कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए। याद रखिए कि हस्बैंड और वाइफ का मतलब होता है कि एक साथ चलना। अगर कोई एक पीछे चलता है या कोई एक ज्यादा आगे चलता है तो फिर जिंदगी लड़खड़ाने लगती है। जब तक आप साथ हैं तब तक बात है। और जिनकी आज जिंदगी में कुछ खास होने वाला है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस रेडियो प्रसवानी पर।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर कुछ बेहतरीन और खूबसूरत मॉर्निंग ट्रैक्स। अच्छा, मान लीजिए आपने किसी जॉब इंटरव्यू के लिए 2 हफ्ते रात रात भर जागकर तैयारी की और एंड में एक मेल आता है कि भैया माफी चाहते हैं कि हमने किसी और कैंडिडेट को चूज कर लिया है। सो बताइए कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगेगा, पर पता है कि सच क्या है? एक रिजेक्शन आपकी वर्थ तय नहीं करता है, क्योंकि एक दरवाजा बंद होने का मतलब ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब बस इतना है कि आपकी डेस्टिनेशन कोई और बेहतर जगह है। रिजेक्शन इज जस्ट रीडायरेक्शन, समझे जी? एक और ट्रैक के साथ आगे चल रही हूँ, इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।

हिंदुस्तानी पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन गानों का साथ। यू नो ओवर थिंकिंग हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी है। रात को 12 बजे दिमाग में 5 साल पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं। जब भी दिमाग ओवर थिंक करने लगे बस एक बात खुद से पूछिए, क्या मैं इस वक्त इस चीज को बदल सकता हूँ? अगर जवाब नहीं आता है तो डीप ब्रेथ लीजिए और बोलिए इट हैपेंस और सो जाइए, क्योंकि कुछ चीजों को आप नहीं चेंज कर सकते और जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उस पर अपनी एनर्जी खर्च करना बेकार है। तो अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाइए जो आपके कंट्रोल में है और सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM पर।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: वेलकम बैक, रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक की ओर। जी हाँ, 3 बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है सताक्षी। और ये गाने जो है ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं, बॉलीवुड के वो गाने हैं, हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, हमारे साथ सुनते रहिए गानों की हैट्रिक। ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

वेलकम बैक। इस गाने के इस पार एक बार फिर से सताक्षी के साथ आप हैं और मेरे साथ सुन रहे हैं इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर। भाई देखिए, महीने की शुरुआत में ऐसा लगता है कि हम ही भगवान हैं और 20 तारीख आते आते हम अकाउंट बैलेंस देखकर सोचते हैं कि चाय के साथ दो कुकीज खाई जाए या फिर एक खाई जाए। यू नो, मनी मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। तो थोड़ा स्मार्ट बनिए, बजट बनाइए और अपने सपनों के लिए छोटी छोटी सेविंग्स शुरू कीजिए। सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एफएम पर।

पर देखिए आजकल हर कोई कह रहा है फॉलो योर पैशन, क्विट योर जॉब, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? भाई बिल्कुल नहीं। पैशन फॉलो करिए और जरूर करिए, पर पहले अपने बिल्स पे करने का इंतजाम कर लीजिए। अपनी 9 to 5 जॉब के साथ अपने पैशन पर 5 to 9 काम करिए। जब आपका पैशन आपको कमा कर देने लगे तब लीप लीजिए, रिस्क लीजिए, पर बिना सेफ्टी घोंसले बनाना बेवकूफी होती है। ठीक है जी, तो ख्याल रखिए, पैशन गलत नहीं है मगर सेफ्टी और सिक्योरिटी जरूरी है। सदाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।